कार्यक्रम देशगान अभी आपने सुना। देशगान कार्यक्रम में आज आपने सुना पारंपरिक रचना समूह स्वर में। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में पहले संस्कृत में और उसके बाद सुबह 7 बजे से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। पहले संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: स्वागतं कृतम्। सः मुम्बईनगरम् अपि गतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः च परस्परहितस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपाक्षिक सहकरणं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः। वार्तायाः अनन्तरं अनेकेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विनिमयञ्च भविष्यति। श्रीमोदी अतिथिविशेषस्य सम्मानार्थं भोजस्य आयोजनं करिष्यति। साइप्रस देशस्य राष्ट्रपतिः अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सहापि मिलिष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अद्य अवदत् यत् विश्वं भारतदेशं विश्वसनीयसहभागिरूपेण पश्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीवर्यस्य पञ्चराष्ट्राणां यात्रायाः विषये नवदेहल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीगोयलः अवदत् यत् इयं यात्रा समाजस्य प्रत्येकवर्गाय लाभस्य प्रत्याभूतिं करोतीति। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिमण्डलस्य भ्रमणेन प्रतीयते यत् भारतं वैश्विकस्तरे दृढतया स्थितम् अस्तीति। सः एकस्य प्रश्नस्योत्तरे अवदत् यत् राहुलगान्धिनः नकारात्मकराजनीतेः कारणात् जनाः निर्वाचने कांग्रेसेति दलं निराकृतवन्तः। पश्चात् अन्यस्मिन् कार्यक्रमे श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतम् अमेरिकाञ्च स्वाभाविकसहभागिरूपेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। प्रौद्योगिकी नवान्वेषणं रक्षा डिजिटल दत्तांशकेन्द्राणि क्वेण्टम् कम्प्यूटिंग अथ चिकित्सोपकरणादिषु क्षेत्रेषु परस्परं पूरकरूपेण कार्यं कुरुतश्चेति। अष्टमः भारत फ्रांस समुद्रीय सहकार संवादः बुधवासरे पेरिस नगरे आयोजितः। चर्चायाम् अवैध समुद्रीय गतिविधीनां प्रतिरोधाय परिचालन सहकारं सुदृढं कर्तुम् उभयोः देशयोः सहभागित्व प्रतिबद्धतां प्रति अवधानं दत्तम्। सशस्त्रलुण्ठनं सागरीय आतंकवादः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणम् अवैधम् अनिर्दिष्टम् अथ अनियन्त्रितमत्स्यपालनम् अपि च अन्यानि सागरीय संकटानि चापि चर्चिताः। कोलकाता उच्चन्यायालयेन आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालये बलात्कार हत्या प्रकरणस्य अन्वेषणार्थं विशेष अन्वेषणदलस्य स्थापना कृतास्ति। त्रिसदस्यीयस्य एसआईटी इत्यस्य नेतृत्वं केन्द्रीयान्वेषण विभागस्य पूर्वक्षेत्रस्य संयुक्त निदेशकः भविष्यति। न्यायालयः जून मासस्य पञ्चविंशतिः दिनांकात् पूर्वं स्वप्रतिवेदनं दातुं दलम् आदिष्टवान्। एनईईटी परीक्षापत्र स्राव प्रकरणस्य प्रमुख विकासे लातूरनगरस्य बालरोग चिकित्सकः डॉ मनोज शिरुरे इत्येषः केन्द्रीयान्वेषण विभागेन गृहीतः इति कथ्यते। सूत्रानुगुणं डॉ शिरुरे इत्येषः स्वपुत्र्यै एनईईटी परीक्षायाः प्रश्नपत्रम् अकृणोदिति अन्वेषण संस्थाः शङ्कयन्ति। एकोनविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य पुलवामा आतंकवाद आक्रमणस्य सूत्रधारत्वेन विश्वसितः हमजा बुरहान नामकः आततायी पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरे अज्ञातभुषुण्डिधारिभिः नरकं प्रति प्रयातितः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः उत्तरप्रदेशे मध्यप्रदेशे विदर्भप्रदेशे च उष्णतरङ्गात् तीव्रतर उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भविष्यतीति मत्वा रक्तसूचना घोषिता। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ तटीय आन्ध्रप्रदेशे अपि एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडा चक्रे गुजरात टाइटन्स इति दलेन गतरात्रौ अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलम् एकोननवतिः धावनांकैः पराजितम्। गुजरात टाइटन्स इत्यनेन स्थापितस्य 33-200 धावनांकानां लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं प्रायः मध्य चतुर्दश कन्दुक क्षेपण चक्रेषु 40-100 धावनांकान्येव विरचयत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में आप आए बहार आई फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रीनिवास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना आई मिलन की बेला फिल्म का गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

शान फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा हुआ और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ। आवाजें थीं किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की।

0: ঘন্টা টেলিলক অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली
7: भारती।
8: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी आपने किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में सत्य पे सत्ता इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे आरडी बर्मन। और इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

झरोखा कार्यक्रम सुनैया जमो संगे संगवारी मन ला मुकेश चतुर्वेदी की जय जोहार सुप्रभात। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ हर पर्यटन के हिसाब ले काफी समृद्ध राज्य हवे। यहाँ एक ले एक बढ़ के पर्यटन स्थल हवे। तो आज हम आप लेके जाबो कानन पिंडारी यानी बिलासपुर के चिड़ियाघर कानन पिंडारी में। भैया हो, कानन पिंडारी हर बिलासपुर ले जबलपुर मार्ग में 9 किलोमीटर के दूरिया में स्थित हवे और सन 1974 में आम लोगन के मनोरंजन और दुर्लभ पशु पक्षी मन के संरक्षण के उद्देश्य ले स्थापना करी गए रही हवे। यहाँ आने बाने की पशु पक्षी जौन मा शेर, हिरण, भालू, लकड़बग्घा, बाघ, दरियाई घोड़ा, बिंद्रा और नाना प्रकार के पक्षी मन बर आवास और परिवेश के निर्माण करे गए हवे। फिर यहाँ सांप मन बर घलो प्राकृतिक परिवेश के निर्माण करेगी से जहाँ वो आसानी से रह सके। इकर अलावा हमला देखे पर मिलते वहाँ अजगर, कोबरा, रेड स्नेक, गोह, पक्षी मनमा, अफ्रीकन ग्रे पैरोट, सिल्वर विजेंट, काजल पिजन, उल्लू, गिद्ध, बाज, स्क्वायरल, सफ़ेद कौआ, मोर सहित देसी विदेशी प्रजाति के नाना प्रकार के पक्षी हमला देखे पर मिलते। फिर ये कानन पिंडारी चिड़ियाघर के कुल क्षेत्रफल लगभग 60 हेक्टेयर में फैले हवे जो उन्हें चारों तरफ ले दीवार और कांटा तार में घिरा है। पार्क के भीतर आस पास के जंगल के घायल जीव जंतु पशु पक्षी के इलाज पर पशु संरक्षण पर चिकित्सालय भी आवे ताकि उमन की उचित उपचार सहित देखभाल हो सके। इकर अलावा ये पार्क में छोटे लेकान मन पर नाना प्रकार के झूला हवे, मोगली पार्क है, हाथी पार्क है सहित विभिन्न प्रकार के झूला, फिसल पट्टी सहित आनी बानी के मनोरंजन के भरपूर साधन हवे। अवसर लगे तो एक बार जरूर घूम क्या हुआ आप मन भी। कुल मिला के ये कहे जा सकते है कि शहर के नजदीक में प्राकृतिक वातावरण ले लबरेज सुंदर जीव जंतु की अद्भुत नजारा हमला एकानन पिंडारी पार्क में देखे बर मिलते। तो भैया हुआ आज के झरोखा में ले देवा विदा। फिर नवा दिन नवा गोट के संग हम हाजिर हो। तब तक आप सब जनला मुकेश चतुर्वेदी के राम राम, जय जोहार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: भारती,
7: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा, इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 7:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गांधी चर्चा।

अथवा नहीं, स्त्री के साथ बलात्कार हो तब उस दुष्ट की हत्या की जानी चाहिए अथवा नहीं, खेत में हल चलाने से छोटे मोटे जीव मर जाते हैं यह जानने पर भी हल चलाना चाहिए अथवा नहीं, अहिंसा का उपासक ऐसी समस्याओं को सुलझाने के चक्कर में नहीं पड़ता, इन समस्याओं को जब सुलझना होगा तब अपने आप सुलझ जाएंगी। इस भूल भुलैया में पढ़ना अहिंसा को भूलने के समान है। जिस व्यक्ति के मन में अहिंसा का पालन करने का उत्साह है उसे चाहिए कि वह अपने हृदय में झांके और अपने पड़ोसी की ओर देखे। यदि उसके मन में द्वेष भरा हो तो वह समझ ले कि वह अहिंसा की प्रथम सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाया है, और जो अपने पड़ोसी के प्रति, साथी के प्रति अहिंसा का व्यवहार नहीं करता वह अहिंसा से हजारों योजन दूर है। फलतः वह रोज रात को सोते समय अपने आप से पूछे, आज मैंने अपने साथी का तिरस्कार किया, उसे खराब खादी देकर स्वयं अच्छी खादी ली, उसे कच्ची रोटी देकर मैंने अच्छी सिकी रोटी ली, अपने काम से जी चुरा कर अपने साथी पर बोझ डाला, आज पड़ोसी बीमार था उसकी तीमारदारी के लिए उसके पास नहीं गया, प्यासे राहगीर ने मुझसे पानी मांगा मैंने उसे नहीं दिया, मेहमानों के आने पर मैंने उन्हें नमस्कार तक ना किया, मजदूरों को कटु वचन कहे उन पर बिना विचार ज्यादा काम लादता गया, बैलों को छड़ी मारता रहा, रसोई में चावल कच्चे थे इससे भी रुष्ट हुआ, इन सब में भारी हिंसा है। इस तरह नित्य के व्यवहार में यदि हम स्वाभाविक रूप से अहिंसा धर्म का पालन नहीं करते तो अन्य चीजों के संबंध में पालन करने लायक नहीं बनते, अथवा यदि अन्य चीजों के बारे में हम अहिंसा का पालन करते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम है अथवा कोई कीमत नहीं। अहिंसा प्रतिपल कार्य करने वाली प्रचंड शक्ति है, उसकी कसौटी हमारे प्रतिक्षण के कार्य में, प्रतिपल के विचार में होती है। जो कौड़ी की चिंता करेगा उसका रुपया भी सलामत रहेगा, लेकिन जिसे कौड़ी की परवाह नहीं उसने कौड़ी तो खो ही दी, उसका रुपया भी कभी उसका नहीं।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांधी चर्चा FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। मॉर्निंग न्यूज रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 8:15 पर। कार्यक्रम इनसे मिलिए, इसे आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 9 बजे। प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे सुबह 9:55 पर, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। कार्यक्रम संबंधी जानकारी हम आपको देंगे कार्यक्रम विवरण में सुबह 10 बजे। 10:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। अपनी पसंद के गाने आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सुबह 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से दिन में 11 बजे से। प्रादेशिक समाचार 11:55 पर रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। दिन में 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम, और रात्रि में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप विविध भारती कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या सुनिएगा शाम 5:10 से। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का प्रसारण होगा शाम 6:20 से, और इसका शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल शाम 7:20 पर। इसमें आज चर्चा का विषय रहेगा सतत आय का साधन।

0: साग सब्जी उत्पादन। इसके अलावा आप सुनेंगे नसीहत, बदलते मौसम में बगीचे की उचित देखभाल। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गाने हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। विविध संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 10:00। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:00 को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन

0: नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के दो दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज दो और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बीसीके के वन्नियारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
6: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
5: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business, and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of seven big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, and their ecosystems. A report.
7: The International Big Cat Alliance IBCA Summit was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. Following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it was decided that in order to ensure broad and active participation from all range countries, including African countries, the first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has said that the new dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The ministry added that India remains firmly committed to working with all partners to advance the shared objectives of biodiversity conservation and sustainable development. Samarth Singh for Akashvani News, Delhi.
5: Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway board officials and field officers from across the country, attended the meeting. We have a report.
8: According to Ministry of Railways, initial investigations into several recent incidents, including some fire-related cases, have pointed towards the involvement of anti-social elements. The Railway Protection Force is actively probing these incidents. Officials noted during the meeting that timely and proactive action by railway authorities in several instances helped prevent larger mishaps. The railway said it is intensifying the use of modern technology tools such as artificial intelligence, drones and CCTV systems to strengthen the safety of passengers, trains and the wider rail network. The initiative is being carried out in mission mode with a focus on improving intelligence gathering at the beat level of the RPF. Railways Minister Ashwini Vaishnav said intelligence gathering from the field is being strengthened using modern technology tools. Meanwhile, the advisory from the ministry is crucial amid rising Russian trains due to vacation season, and so it is important for passengers to remain alert and vigilant while travelling. Komudi Parekh for Akashvani News, Delhi.
5: The Calcutta High Court has ordered setting up a three-member special investigation team SIT of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. We have more from our correspondent.
9: The three-member seat will be led by the Central Bureau of Investigations Joint Director for Eastern Zone. The court has asked the team to find its report by 25th June. A division bench of Justice Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh directed the CBI to retrace events from the victim's dinner on 9th August 2024 through to her cremation. The agency has also been given freedom to investigate all related aspects. The court decision follows repeated concerns from the victim's family alleging tampering of evidence and suspension of facts. The bench emphasized that the CID must examine every detail to ensure a comprehensive investigation. The crime, which shocked the nation in 2024, saw civic volunteer Sanjay Rai sentenced to life imprisonment. But widespread protests by doctors and civil society have kept the demand for justice alive. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
5: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AII News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. We have a report.
10: Burhan Hamza, alias Arjumand Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror acts in Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. According to local police, Burhan, a principal of a private college in Gojra, Muzaffarabad, was targeted when he came out of his college Thursday morning. The attackers fired multiple shots at close range and he sustained three bullets to the head. Hamza Burhan, born in 1999, hailed from Pulwama in Jammu and Kashmir. He went to Pakistan on valid documents where he joined the Al-Badr terror group. According to the Union Home Ministry, he was an active terrorist and commander of Al-Badr. Since going to Pakistan, he had been motivating youth to join Al-Badr and funding the outfit's terror activities. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
5: Punjab police has arrested a Pathankot resident for spying for Pakistan-based handlers by installing internet-linked CCTV camera on the Pathankot-Jammu National Highway 44. Pathankot SSP Daljinder Singh Dhillon told Akashwani News that as per the preliminary investigation, the accused Baljeet Singh installed a CCTV camera near a bridge on the National Highway 44 to allegedly keep an eye on the movement of the army and paramilitary forces. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him an opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
11: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I went, I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
5: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today. Meanwhile, in Uttar Pradesh, temperature is breaking all records as the entire state is reeling under heat wave. On the fifth consecutive day, Banda district in the state recorded the highest temperature in the country of 47.6 degrees Celsius. More from our correspondent.
12: Torture of temperature continues in a state where mercury is touching new heights every passing day. Bundelkhand is worst hit area where temperature has gone beyond 45 degrees Celsius in most parts of the region. 47.6 degree in Banda was not just highest in the country but also 4 degrees above normal, which paralyzed life in the city. Prayagraj was not far behind with temperature reaching 46.6 degrees, 5 degrees above normal. Varanasi recorded 45.6 degrees Celsius. state capital Lucknow also experienced the hottest day of this season, with mercury rising to 43.6 degrees, 5 notches above normal. People are having sleepless nights also because of mercury reaching 30 degrees in night. Met department has warned about severe heat wave in some parts of the state. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
13: In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. With this, CSK were officially eliminated from the season of IPL after finishing the league stage with just 12 points. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, CSK were bundled out for just 140 runs in 13.4 overs. Shivam Dubey was the top scorer with 47 runs. For Gujarat Titans, Mohammad Siraj, Rashid Khan and Kagiso Rabada took 3 wickets. Siraj was a just player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit.
14: Thank you, Pramod. Explore alternative energy sources, PM tells government amid West Asia crisis, headlines the Indian Express, while the Hindustan Times headlines reforms, delivery, West Asia in focus as PM meets ministers, and the Statesman headlines PM Modi chairs high-level governance review meeting amid global concerns. The Asian Age headlines, first coalition government in Tamil Nadu in 74 years, 23 join cabinet, while the Times of India says Vijay expands Tamil Nadu cabinet with 7 Dalit ministers, Congress back in government after 59 years. Almost all newspapers carry the story of the India-Africa-Delhi summit being postponed due to the Ebola crisis. The Tribune headlines, Ebola scare delays India-Africa summit. Most papers cover the story of Hamza Burhan, a key figure linked to the 2019 Pulwama attack, which killed 40 CRPF jawans being shot at in POK. The Hindu, in its editorial titled Castaway, writes that people must have the option to state they are casteless in the census. The paper adds that the Supreme Court was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, which is part of the ongoing Census 2027. The Chief Justice of India remarked that any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare. And finally, the Statesman on its front page says, ahead of Nautapa, planes simmer, but some respite around May 29th. And with that, it's back to you, Pramod.
13: Thank you. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the June 1st postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
15: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री वीरेंद्र सिंह से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है रमाशंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी बहुत ही नायाब है और इस पृथ्वी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब इस जैव पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं। श्रोताओं, हम जब अपनी पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राकृतिक तत्व हैं उनमें जल, वायु, इस तरह के जो तत्व होते हैं ये हमें धरती पर स्वतः ही प्राप्त हुए हैं। ये एक सीमित संसाधन है, इन्हें बचाए रखना, संरक्षण करना हमारा दायित्व होता है। और श्रोताओं, जल की बात करें तो पृथ्वी का लगभग 70% से ज्यादा भाग जल से घिरा हुआ है। हमारे पृथ्वी में नदियां, तालाब, सागर, महासागर जैसे जल के कई स्रोत हैं, लेकिन पीने के पानी के स्रोत कम ही हैं। और श्रोताओं, शनह शनह जैसे जैसे समय बीत रहा है हमारे पृथ्वी में पानी की मात्रा घटती जा रही है। तो श्रोताओं, जल संरक्षण हमारे लिए काफी आवश्यक है और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। और श्रोताओं, जल संरक्षण की बात करते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति का दायित्व नहीं है, ये एक सामूहिक दायित्व होता है जिसके लिए लोगों को जागरूक करना होता है और इसके लिए स्वतः जागरूकता की भी आवश्यकता होती है। श्रोताओं, भारत में कई ऐसे लोग हैं जो जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से वीरेन सिंह जी हैं जो जल संरक्षण के कार्य से कई सालों से जुड़े हुए हैं और इन्हें वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो वीरेन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं वीरेन सिंह दलित राजा जिला बालोद से हूँ। विगत 28 वर्षों से जल संरक्षण के लिए काम कर रहा हूँ। इसमें मैं पारंपरिक हमारे जो है तालाब, कुआं, इन्हें बचाने के लिए मैं जन सहयोग से जुटा हुआ हूं। अब तक छत्तीसगढ़ में 40 तालाबों की सफाई कर चुका हूं। हमारे बालोद जिला का एक तांदुला नदी है, जन सहयोग से इसमें मैंने हर साल अपना योगदान देता हूं और लोगों से निवेदन करता हूं कि नदियों को भी स्वच्छ रखें, इसमें कूड़ा करकट, प्लास्टिक, पॉलीथीन ना फेंकें और हमारे तालाब जो धरोहर हैं इन्हें बचाना है। आप इसमें आसपास नहाते हैं तो रैपर, प्लास्टिक, दातुन, ये सब इस पानी में ना फेंकें, इससे पानी प्रदूषित होगा। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ का वाटर लेवल को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान तालाबों का ही और कुओं का ही है।
0: जी, तो वीरेन जी, जैसे आप बालोद जिले से हैं जो दलित राजरा ग्राम है, तो ये जो है एक तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का मध्य जो क्षेत्र है, यहाँ कई तालाब हैं, पोखर हैं, नदियां हैं यहाँ पर और जल के कई स्रोत हैं। तो जब जल संरक्षण का कार्य आपने शुरू किया और आज तक आप देखते हैं कि जो जल के संसाधन थे उनमें क्या अंतर आया है, ये बढ़ रहे हैं कि सिमट रहे हैं?
1: वर्तमान में मैं जहाँ दिल्ली राज रहा हूँ, कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो 24 घंटे उनके जल प्रवाह होते रहते हैं। आज पानी की तो हमारे यहाँ भरपूर है, बाकी इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तालाब भी सिमट रहे हैं, छत्तीसगढ़ तालाबों के नाम से जाना जाता था, लोग अब उसे पाट कर आसपास घर बना रहे हैं, कुओं को पाट कर घर बना रहे हैं, जिससे अब पानी का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, धरती में समा रहा है। हम सबको एक जरूरी काम ये करना है कि अपने खेतों में भी पानी के संरक्षण के लिए डबरी उबरी बनाएं और किसानों से भी निवेदन करते हैं कि आप गर्मी के दिनों में धान ना बोएं, इसकी जगह कम पानी वाली फसल लें, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर आधुनिक तकनीक का उपयोग करें और उन्नत कृषि का दर्जा पाएं। ये छोटे छोटे प्रयास अभी हम किसानों के साथ भी कर रहे हैं।
0: जी जी जी वीरेन सिंह जी, तो हम एक जो मूल सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है?
1: सोचो एक पल, ना होगा जल तो क्या होगा कल, जल बिना सब सुना, ये कहावत हमने सुनी है। वर्तमान में धरती का बढ़ता हुआ तापक्रम और पानी का जल स्तर गिर रहा है दिन प्रतिदिन। पूरे वर्ल्ड में 71% पानी है खारा पानी जो पीने योग्य नहीं है। इसमें से मात्र हम 3% पानी का उपयोग मीठा जल के लिए कर रहे हैं, इसमें आधा से अधिक तो ग्लेशियर हैं। आज हमारे आसपास जो वर्षा जल है इसको बचाना है, वर्षा के जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, चाहे कुओं के माध्यम से या डबरी के माध्यम से या तालाबों के माध्यम से धरती तक पहुंचाना होगा, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे और हमें पीने का पानी मिलेगा। ये सब छोटे छोटे प्रयास हम सबको करना होगा।
0: तो वीरेंद्र सिंह जी, जब हम जल संरक्षण की बात करते हैं तो आपने जल संरक्षण में अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं?
1: जल संरक्षण में सर मैंने जन सहयोग से अब तक 28 वर्षों में 35 से 40 तालाब को साफ सफाई किए हम छत्तीसगढ़ के, और वर्तमान में भी ये जारी है। हमारे यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तालाब हैं, वर्तमान में गाँव के लोगों को लेकर इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रयास अभी जारी है।
0: वीरेंद्र सिंह जी, जब हम छत्तीसगढ़ में आपके किए गए कार्यों की बात करते हैं तो आपको वाटर मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, तो ये उपाधि आपको कब मिली और क्यों मिली?
1: वाटर मैन ऑफ छत्तीसगढ़ मुझे अभी 2026 में कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड घोषित हुआ, वहाँ मुझे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया गया। मेरे छोटे छोटे प्रयास तालाबों को संरक्षण के लेकर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जन सहयोग भी मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मुझे वाटर मैन ऑफ छत्तीसगढ़ का खिताब से छत्तीसगढ़ शासन ने कोपरा जलाशय में सम्मानित किया। इसके लिए सर मैं जल संरक्षण के काम अपने घर के आसपास से लोगों से निवेदन करता हूँ कि व्यर्थ पानी को बहने ना दें, जहाँ भी पानी बहे उसे रोकना होगा। और मैं तो जहाँ रहता हूँ दल्ली राजहरा, वहाँ तो पानी 24 घंटा अविरल जल धारा प्रवाह है, प्राकृतिक जल स्रोत हैं, तो इन्हें बचाने के भरकस प्रयास करता हूं। तो लोग आसपास भी मुझे आमंत्रित करते हैं कि हमारे यहां भी आइए और एक अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश दीजिए। तो मैं गांव में जाता हूं, वहां भी तालाबों को बचाता हूं, वहां भी जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन्हें संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों को लेकर, राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे, स्काउट गाइड सबको लेकर एक जन जागरण नुक्कड़ माध्यम से गाँव वालों को संदेश देता हूँ कि जल को बचाइए, बारिश के जल को आप इसको कैच करना है और इसका संरक्षण करना है, तभी हमारे वाटर लेवल बढ़ेंगे।
0: जी जी, तो वीरेंद्र सिंह जी, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे हम जल का शरण कर रहे हैं या जल को हम बर्बाद कर रहे हैं?
1: जल का बर्बादी तो हम अपने घरों से ही हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमें पानी की आवश्यकता नहीं है तो हम उसका व्यर्थ उपयोग ना करें, जैसे हमें सेविंग करना है, सावर से नहाना कोई जरूरी नहीं, आप मग और बाल्टी का उपयोग कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए बाल्टी से उपयोग कर सकते हैं, स्कूटर को बाल्टी से लेकर आप साफ सफाई कर सकते हैं, आपके इर्द गिर्द घर के आसपास कोई नल बह रहा है तो उसको बंद करिए, अपने बच्चों को भी उसको बाल्यकाल से प्रेरित करिए पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए, उन्हें आपके संस्कार में शामिल करना होगा। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इस स्वस्फूर्त जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे, हमें इन्हें अपने घर के आसपास या स्कूल के बच्चों को भी प्रेरित करना होगा। मैं अब तक छत्तीसगढ़ के 2.5 लाख बच्चों को 28 सालों में पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर चुका हूँ और निरंतर मेरा प्रयास जारी है।
0: तो वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में अभी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, तो क्यों ना हम कार्यक्रम में एक छोटा सा विराम ले और आपकी पसंद का एक गीत सुने।
1: सर मेरा पसंद का एक गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों में मिलेंगे राहें बहार के, ओ राही ओ राही।
0: वीरेंद्र सिंह जी ने जो गीत पसंद किया है आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे वीरेंद्र सिंह जी से, जिन्हें वाटर मैन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये जल संरक्षण के कार्य से जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम जानना चाहेंगे, जो आपने कार्य किए हैं इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है, उन्हीं में से एक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आपको वाटर हीरो और जल प्रहरी के नाम से भी सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में बताएं कि ये सम्मान आपको कब प्राप्त हुआ और क्यों प्राप्त हुआ, और ये इसके लिए आप कैसा महसूस करते हैं?
1: लगातार 26-27 वर्षों से जल संरक्षण के लिए प्रयास करते हुए मुझे जल शक्ति मंत्रालय ने 2023 में वाटर हीरो और जल प्रहरी सम्मान से देकर मुझे सम्मानित किया, और मुझे बहुत खुशी भी और मुझे ऊर्जा भी मिला। लगातार उसके बाद मैं और जल संरक्षण के लिए जोर शोर से भिड़ा हुआ हूँ, और आसपास के लोगों, चाहे स्कूल कॉलेज के बच्चे हों और अपने से ग्रामीण जनता हो, सबको अब साथ लेकर हम जल के लिए जुड़ चुके हैं। किसानों से साथ हम बैठ रहे हैं कि अब जल के एक एक बूंद बचाना है, बारिश के जल को बचाना है। हमारे पास तालाब हैं, कुआं हैं, बारिश के जल को वहाँ तक, धरती तक पहुँचाने के लिए हमारे पास माध्यम है। वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी अपनाना है। तो ये छोटे छोटे प्रयास हम सब कर रहे हैं।
0: तो वीरेंद्र सिंह जी, जैसे आपको दल्ली राजरा का क्षेत्र है, बालोद जिला का है, तो वहाँ आपको ग्रीन कमांडो के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में बताइए कि ग्रीन कमांडो क्या होते हैं?
1: सर, हरियाली के लगातार मुझे प्रयास करते हुए बहुत लंबे समय हो गए, तो मुझे शुरुआत करने में 8-10 युवाओं को लेकर जब शुरुआत किया था 25 साल पहले, हमने छोटे छोटे प्रयास करते थे, वृक्षारोपण, गांव में जाकर आसपास बोरिंग तालाबों की सफाई करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया। हमने साइकिल से यात्रा करके, रात में नुक्कड़ नाटक करके, 2007 में हमने पूरे छत्तीसगढ़ का साइकिल से भ्रमण किया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए नुक्कड़ के माध्यम से संदेश दिए। 2008 और 9 में हम भारत और नेपाल की यात्रा की है साइकिल से, और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए पेपर पाम्पलेट के माध्यम से उनको संदेश दिए, और वर्तमान में भी हम लोगों से निवेदन करते हैं, आप साइकिलिंग ज़्यादा उपयोग कीजिए, पेट्रोल डीजल का हमें बचाना है और बिजली का भी बचत करना है। तो ये सब हमके छोटे छोटे प्रयास से ये सब ऊर्जा हम बचत होगी और हम देश में आगे एक बढ़ते चले जाएंगे।
0: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है वीरेंद्र सिंह जी। तो वीरेंद्र सिंह जी, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इसके लिए हमारा नाम होता है, आपके अच्छे कार्य के पुरस्कारों की बात करते हैं, तो इसकी एक काफी लंबी फहरिस्त आपके पास है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन से सम्मान आपको प्रदान किए गए हैं।
1: सर, मुझे तो वाटर हीरो और जल प्रहरी के साथ जल शक्ति मंत्रालय ने मुझे 2023 में सम्मानित किया, इसके साथ साथ 2011 में छत्तीसगढ़ दैनिक भास्कर ने, इन्होंने भी सम्मानित किया मुझे, और अब वर्तमान में 2026 में सीट्स संस्था ने रांची में मुझे एकम सम्मान से सम्मानित किया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते हुए मुझे 26 साल हो गए, इसके लिए एकम सम्मान मुझे मिला। नित्य नए नए अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश देने लग जाता हूँ।
0: तो वीरेंद्र सिंह जी, जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो इसमें जो है प्लास्टिक काफी हानिकारक हो रहा है, और इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, और इससे जलाशयों और जल के संरक्षण में किस तरह बाधा आती है?
1: वर्तमान में हम शादी ब्याह में भी जाकर लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक की जगह आप स्टील का गिलास उपयोग कीजिए, दोना पत्तल का उपयोग कीजिए, और हमारे ग्रामीण अंचल में अभी लोग दोना पत्तल तो उपयोग कर ही रहे हैं, वर्तमान में शहरों में थोड़ा सा देखा जा रहा है डिस्पोजल का ज़्यादा उपयोग। हम उनसे निवेदन करें कि स्टील गिलास का उपयोग करिए और अपना काम करिए, इस प्लास्टिक पूरे नदी तालाब और पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं। ये तो गलते भी नहीं, और धरती में ये पूरा प्रदूषण कर रहे हैं, बंजर भूमि को बंजर कर रहे हैं, गौ माता के पेट में समा रहे हैं, तो हम सबको अब सोचना होगा।

0: इसकी जगह वैकल्पिक रूप हमें स्टील ग्लास ही उपयोग करें और शादियों में दोनों पतल का उपयोग करें, प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो बिल्कुल ही ना करें।
1: जी, तो ये जन जागरूकता से ही प्लास्टिक इस्तेमाल को
0: रोका जा सकता है।
1: तो विनय सिंह जी, आपने अभी बताया कि कोपरा जलाशय जो बिलासपुर में है और यहाँ पर भी वेटलैंड संरक्षण के कार्य के लिए आपको बर्ड वॉक ऑफ संगोष्ठी में आमंत्रित किया गया था, तो इसके बारे में बताएं कि ये आयोजन कैसा था और इस आयोजन का क्या महत्व था।
0: ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़ का पहला वेटलैंड साइट रामसर साइट घोषित किया गया। इसमें देश के और भी विशेषज्ञ आए हुए थे, मुझे भी आमंत्रित किया गया और कुछ अपना पक्ष रखने को दिया गया। तालाबों और वेटलैंड को भी बचाना बहुत जरूरी है। ये वेटलैंड साइट हमें मत्स्य हो चाहे कृषि हो, ये हर क्षेत्र में इनका योगदान होता है। वहाँ प्रदूषण नहीं करना चाहिए हमें, ये बात मैंने वहाँ रखी थी कि इसे भी प्रदूषण से बचाना होगा। आसपास क्षेत्रों में वृक्षारोपण और हरियाली लाने के लिए भरकस प्रयास सब ग्रामीणों को लेकर करना होगा।
1: तो आपने एक बात और बताई थी, एकम सम्मान 2026 में आपको दिया गया, साथ ही बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2023 में आपको दिया गया, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: छत्तीसगढ़ शासन 22 मई 2023 को जैव विविधता पुरस्कार और 25,000 रुपए से मुझे सम्मानित किया था। मैंने जंगलों में आग लगाने से जीवों को बचाने के लिए, जैसे गर्मियों में मिट्टी के सकोरे, हर वर्ष 200 सकोरे लोगों को भेंट करता हूं और जंगलों में जाकर वहां पानी की व्यवस्था करता हूं कि जो पशु पक्षियों के लिए, और आग को स्वयं बुझाता हूँ। इसलिए शासन ने मुझे जैव विविधता का पुरस्कार भी दिया था। वर्तमान में भी गर्मी के दिनों में लोग महुआ को बीनने जाते हैं और उस नीचे वृक्ष के नीचे आग लगा देते हैं, जिससे पूरा सारा जंगल में आग फैल जाता है। तो ये जन जागरूकता भी मैंने चला रहा है कि आप महुआ को बीनने से पहले उसे झाड़ू से साफ करिए, जंगल को बचाना जरूरी है। आज जंगल रहेगा तो जैव विविधता रहेगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। वर्तमान में मैं 3,000 सीड बॉल जो विलुप्त होते बीज हैं, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, और इनको लेकर मैं जंगलों में सीड बॉल बनाकर अभी फेंक रहा हूँ बारिश से पूर्व, और लोगों को भी भेंट कर रहा हूँ। लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आपके घर में भी आम के सीजन है, गुठली निकलेंगे, इसको आप जंगलों में फेंकिए, कम से कम ये हरा भरा जंगल होंगे, फल फलेंगे तो पशु पक्षियों के भी काम आएंगे। तो वर्तमान में अभी मेरा ये काम बारिश से पूर्व हरियाली लाने के लिए मैं सीड बॉल और बीजों को एकत्रित करके जंगलों में फेंक रहा हूँ। और आप सबसे भी निवेदन है कि आपके घर में जो जामुन के बीज मिलेंगे, अभी आम के गुठली मिलेंगे, इन्हें जंगल में फेंकिएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दीजिएगा।
1: जी, वीरेंद्र सिंह जी, जब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वन संपदा से काफी भरपूर है, और जब हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं, दल्ली राजरा बालोद क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये वहाँ भी हमारा वन आच्छादित प्रदेश है। और जब देखिए, जब वनों की बात होती है तो वहाँ वन्य जीवों का भी जो है उनका वो एक प्राकृतिक रहवास है। पेड़ पौधों का काफी कटाव किया जा रहा है, जिससे इनकी धमक जो है गांवों में हो गई है, ये घरों तक पहुंच गए हैं। तो इसका जो कारण है, हमारा जो मानव अस्तित्व का जंगल की ओर बढ़ना, इसे आप कैसे देखते हैं?
0: यूँ तो हमारा छत्तीसगढ़ 44% हरियाली से आच्छादित है। उसमें एक जिला है हमारा बालोद जिला, वहाँ डैम है बहुत बड़ा, तांदुला जलाशय, और दल्ली राजरा में भी कई प्राकृतिक जल स्रोत होने के कारण आसपास आपको रात को जब भी आप कभी विचरण करेंगे, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू और हिरण, ये सब आपको बंदर बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और राजरा और बालोद के मार्ग में आप गुजरते बस में कभी भी जाएं या रात्रि को विचरण आप किसी भी माध्यम से जाएं, तो आपको हिरण अवश्य देखने को मिलते हैं। मन बहुत खुश हो जाता है कि ये इन्हें नेचुरल जगह मिला हुआ है। आम जनता से निवेदन किया जाता है कि आप इसको संरक्षित करने के लिए भी आप अपना योगदान दें और जंगलों को ना काटें। जब भी कहीं आग लगे तो वहाँ अपने फॉरेस्ट वाले को सूचित करें, जंगल को बचाएंगे तभी वन्य प्राणी बचेंगे और तभी पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा।
1: जी, वीरेंद्र सिंह जी, जैसा कि हम जानते हैं कि रेडियो में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में हर माह के आखिरी रविवार को आते हैं और वे अपने मन की बात साझा करते हैं आम जन, भारत की जनता से। तो उसी कार्यक्रम में आपकी भी बातें एक बार साझा हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने आपके बारे में चर्चा किए थे, तो वो

0: ने शुरुआत किया है। शादी होते हैं वर वधु के तो मैं पौधा के साथ साथ वहाँ पोस्टर बैनर लेकर जाता हूँ। जैसे अभी वर्तमान में जल समस्या है तो जल वर वधु को पौधे गिफ्ट करके वहाँ जितने भी खड़े हैं जल स्लोगन लिखा हुआ रहता है, जल ही जीवन है, जल बिना सब सूना, ये पोस्टर। और जैसे बारात उरात में जा रहे हैं तो दूल्हे के गाड़ी में मैं पोस्टर लगाता हूँ, आओ जल बचाएं। तो ये एक संदेश के साथ साथ और जैसे बैंड बाजे के साथ इनका जब बारात निकलता है तो हम पोस्टर भी पकड़ लेते हैं जल का संरक्षण का, वन्य प्राणी का संरक्षण का, तो एक नया संदेश जाता है। ये इसी तारतम्य में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे छोटे छोटे प्रयास जल संरक्षण के 101वीं कड़ी में उन्होंने अवगत कराया, शादी में बारात जल बारात दूल्हा द्वारा निकाला गया, तो वो बहुत अच्छा लगा, याद किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिला और हमारे कार्य को गति मिल रहा है और लगातार और अच्छे से हम कुछ नए नए आइडिया लेके आ रहे हैं, लोगों को कैसे ध्यान आकर्षण करें जल बचाने के लिए, पौधे लगाने के लिए। मैंने अपने कपड़े में भी वन्य प्राणी संरक्षण, वन को आग से बचाने का पूरा ड्रेस ही सिला लिया है। जहाँ भी इसकी आवश्यकता होती है, जैसे अभी जंगलों में मुझे जाना होता है आसपास के गांव में, तो मेरे ड्रेस में लिखा है वनों को आग से बचाओ, वन्य प्राणियों का ड्रेस है। तो स्कूलों में चल जाता हूँ तो बच्चे मुझे अट्रैक्ट होकर देखते हैं, वो स्वस्फूर्त उनको लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जल बचाने के लिए भी मेरा ड्रेस बना हुआ है और वृक्षारोपण को जब बालू जिला में मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है और ड्रेस के माध्यम से मैं पूरे स्कूल स्कूल जाकर बच्चों को बोलता हूँ, ये आपको भी अपने धरती माँ की रक्षा करना है, इसलिए आपको भी एक पौधा लगाना है स्कूलों में और इसका संरक्षण करना होगा। पानी जब आप पीते हैं बॉटल में लाते हैं, इसे फेंकना नहीं, आपने स्कूल के गार्डन में इसको फेंक डालिए पानी को, ये पौधा बड़ा होगा तो एक बहुत बड़ा पेड़ बनेगा और आप जब भी जहाँ जाएंगे फिर याद आएगा कि हमने ये पेड़ को बड़ा किया था।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका वीरेंद्र सिंह जी, और बेशक ही आपकी इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ हरियाली से भरा प्रदेश तो है और हरा भरा होगा। और कार्यक्रम में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: श्रोताओं, आपसे मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जल संरक्षण हो चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, वन्य प्राणी संरक्षण हो, जंगल को बचाना हो, इसके लिए छोटे छोटे प्रयास हम अपने घरों से करिए। आने वाले अपने आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इस देश के भविष्य हैं, इनको एक ऐसा संस्कार दीजिए कि पानी का उपयोग जितना होना है उतना ही करें, बिजली का उपयोग जब काम हो तभी इसका उपयोग करें, आसपास कहीं जल बह रहा हो तो उसे बंद करने के बच्चों को बताइए। और ये छोटे छोटे प्रयास बच्चों को मन में अभी से हम उनके बीज बोएंगे पर्यावरण संरक्षण का, ये आगे चलकर एक नागरिक बनेंगे और ये काम करके देश में अपना नाम रोशन करेंगे, और इसके लिए हम सबको भी छोटा छोटा योगदान देना होगा। अभी इस गर्मी में आप सबको देख रहे हैं कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो बारिश में आप भी एक एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण कीजिए, खेतों में भी आप फलदार पौधा लगाइए, आपका आय का स्रोत बढ़ेगा, इसके साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। सभी किसानों से मेरा ये हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करेंगे और कम पानी लगेगा वह फसल बोएंगे, और बारिश के पानी को धरती तक पहुँचाने के लिए हम कुआं तालाब अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करेंगे और जल स्तर को बढ़ाएंगे। मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा, धरती माता करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो सिंगार, मानव और विज्ञान का गहना, पर्यावरण धरती का है गहना। तो मैं अपने बच्चों को भी ये दोहा बोलिएगा, बच्चे एक वृक्ष अनेक, जहां है हरियाली वहां है खुशहाली।
1: बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। और श्रोताओं, वीरेंद्र सिंह जी जो हमारे छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से हैं, इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं और कार्य कर रहे हैं, इसका दूरगामी परिणाम अवश्य होगा। और जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने कई पौधे लगाए हैं, और इनके जो प्रयास हैं वो आज नहीं वो आने वाले समय में प्रकट होंगे। तो श्रोताओं, जल संरक्षण प्रकृति संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमें अपनी धारा को बचाने के लिए अपने जितने भी प्रयास करने चाहिए हमें करने चाहिए। इसी का संदेश आज वीरेंद्र सिंह जी ने हमारे कार्यक्रम में दिया है, तो हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हम जल संरक्षण प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाएंगे। वीरेंद्र सिंह जी,

0: कार्यक्रम में आप आ जाए और हमारे श्रोताओं से जो इतनी अच्छी बातें साझा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया और मैं अपने छत्तीसगढ़ के सभी श्रोताओं तक अपने छोटे छोटे प्रयासों को पहुंचा सका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी रायपुर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
0: इनसे मिले कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे वाटरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री वीरेंद्र सिंह से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली से।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

इस अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हर साल 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस को मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र की अनमोल विविधता के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन इसे शुरू में 29 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसे बाद में 22 मई की दिनांक तय कर दी गई। इसका उद्देश्य हमें पेड़ पौधों, जानवरों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया है। जागरूकता क्यों फैलाने की जरूरत है? आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक दोहन के कारण कई प्रजातियां खतरे में हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे प्रयास जरूर करने चाहिए, जैसे कि मानव जीवन के लिए जो जरूरी है। क्या जरूरी है? हम भोजन, पानी, हवा, दवाइयाँ, औषधियाँ, ऊर्जा, इसके लिए हम प्रकृति पर ही निर्भर है ना। पारिस्थितिकी संतुलन भी तो कितना जरूरी है। हर जीव का पारिस्थितिकी तंत्र में अपना एक स्थान जो है, किसी एक प्रजाति के गायब होने से पूरा तंत्र प्रभावित हो सकता है। प्रकृति की रक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है और जीव विविधता हमारे ग्रह का जीवनदायिनी ताना बाना है। हमारी हर छोटी कोशिश इससे जुड़ी है। हमें इसे बचाना होगा ताकि मानव और प्रकृति दोनों सुरक्षित रहें। हमें जीव विविधता को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ लगाना और उन्हें बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ काटने से बचें, किसी को काटने भी ना दें। पेड़ हवा साफ रखते हैं और जानवरों का घर भी तो होते हैं, जिसे हम पेड़ों को काटकर उजाड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक और कचरे से बचाओ, प्लास्टिक कम से कम उपयोग करें। कभी भी बाजार जाएं तो अपना घर से बना हुआ कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएं। कचरा हमेशा सही जगह यानी डस्टबिन में फेंकें। कचरा और प्रदूषण जानवरों और पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी और बिजली को बचाएं, पानी भी और बिजली भी दोनों ही वेस्ट ना होने दें। नदियों और तालाबों को साफ रखें। जल प्रदूषण से पानी में रहने वाले जीव मर सकते हैं। जंगली जानवरों और पौधों का सम्मान भी तो कितना जरूरी है। जानवरों को परेशान बिल्कुल ना करें, जंगली पौधों को भी ना तोड़ें, क्योंकि उनका भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक हिस्सा होता है। अगर ये एक हिस्सा भी गायब हो जाता है ना, तो सब कुछ प्रभावित होता है। अपने गांव, मोहल्ले या स्कूल में छोटे छोटे प्रोजेक्ट करें, जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, कचरा साफ करना, पौधे लगाना। छोटे कदम भी बड़ी मदद करते हैं। जंगलों की कटाई और आग लगाना ये तो नहीं करना चाहिए। नदियों, तालाबों और खेतों में कचरा फेंकना, इससे भी बचना चाहिए। जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग भी फसलों के लिए नहीं करना चाहिए। हमारी प्रकृति में हर पौधा, जानवर और इंसान जुड़ा हुआ है और अगर हम पेड़, पानी और जानवरों की रक्षा करेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और भविष्य में हम सब स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली तनी,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास।
3: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटी सी अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चिचलोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म से राहत फतेह अली खान का गाया ये गीत। इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है सोहेल खान ने।
1: संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर।
0: माफ कीजिएगा, धुन बनाई है सोहेल सेन ने।

मेरे ब्रदर की दुल्हन इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे और धुन बनाई थी सोहेल सेन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत वीर जारा फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज में ये अगला गीत। अमिताभ भट्टाचार्य की बोल है और धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। सितारे जमीन पर, ये है फिल्म का नाम।

सितारे जमीन पर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और साथी की आवाज में। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के जमाने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कौन के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथ ही राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घेन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर रायश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोक धुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के माने ना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:55 हुए हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिल्दा समिति खड़गवां में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कल कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के कुशहा गांव में आयोजित चौपाल के दौरान नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित कामयाबी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन विज्ञान और गणित जैसे विषयों को अधिक रोचक तथा व्यावहारिक तरीके से समझाने में सहायक होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। राजनांदगांव जिले को स्टेट कैपिटल रीजन SCR में शामिल कर लिया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गुरुवार को राजनांदगांव में आयोजित व्यापारी महाअधिवेशन में इस संबंध में घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने इसे जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

0: इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। दो सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवालय द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरिया जिले में सुशासन तिहार के दौरान खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सहायक आयुक्त और प्रभारी शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है और आकाशवाणी द्वारा आज रायपुर में स्वर उत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। अपनी पसंद के गाने आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सुबह 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से दिन में 11 बजे से लेकर 11:55 तक। 11:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। दिन में 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। कार्यक्रम संबंधी जानकारी हम आपको देंगे कार्यक्रम विवरण में शाम 5:05 पर। भजन संध्या का प्रसारण होगा शाम 5:10 पर। कार्यक्रम चित्रपट संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचार शाम 6 बजे। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। आकाशवाणी रायपुर से इस कार्यक्रम को रिले करेंगे। फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए आप सुनेंगे शाम 6:20 से शाम 6:45 तक और शाम 7 बजे से लेकर 7:20 तक। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल शाम 7:20 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेगा सतत आय का साधन साग सब्जी उत्पादन। साथ ही सुनिएगा नसीहत बदलते मौसम में बगीचे की उचित देखभाल। इसके अलावा आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हमारे केंद्र से सुनिएगा रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर और कार्यक्रम रजनीगंधा के अंतर्गत सुनिएगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। पहले सुनिए कुमार सानू की आवाज में ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम सुगम संगीत में लीजिए आप सुनिए फागुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: कार्यक्रम सुगम संगीत के अंत में लीजिए, सुनिए नीति मोहन की आवाज में ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाते हैं चाइना टाउन फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है रवि ने। फरमाइश है आप सबकी। पद्मा टाकी जी नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, यहीं से नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डाली बेबी और पूजा तामुरिया, यहीं से राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर, और किकिर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा। आप सबकी पसंद पर लीजिए सुनिए चाइना टाउन फिल्म का ये गीत।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाते हैं ब्रह्मचारी फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत है, और इस गीत की सुनने की ख्वाहिशमंद आप सब हैं। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल

सेन, खुशबू सेन, तारा सेन और कौशल सेन। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये ईमेल फरमाइश इन्होंने लिखकर भेजी है। बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा, पार्थ कश्यप, उमेश, मिथिलेश वर्मा और बंटी बबली वर्मा ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नामहकर, निर्मला विशाल मलकापुर और नारायण इंगले, आशीष और मंगला। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं ब्रह्मचारी फिल्म का ये गाना।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, गुमनाम फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत है, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी, पुष्पेंद्र कुमार दूदी। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े। और पोषण बंछोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंछोर, आप सब हैं जवाहर नगर दुर्ग से। आप सबकी पसंद पर लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गुमनाम फिल्म का यह प्यारा सा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: भाई साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए, आप सुनिए घायल फिल्म का गीत शब्बीर कुमार आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं और बप्पी लहरी का संगीत है। फरमाइश है आप सबकी आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विरिता वर्मा, रुद्र वर्मा। धमधा ग्राम सुखरी कला से आरुषि, ओशिका और आदित्य। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, ये लिखने वाले हैं पलारी से। इनकी पसंद पर लव स्टोरी फिल्म का गीत अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत है।

0: तो ये था आज का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आज आपकी सेवा में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आपके दोस्त गिरिजा शंकर साहू ने। और इसी के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। विविध भारती कार्यक्रम थोड़ी ही देर में रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

पंकज उधास की आवाज में आपने ये गाना सुना और अब पेश है ये अगला गाना। आवाज है जुबिन नौटियाल और जोनिता गांधी की नवीन त्यागी के बोल हैं संदीप गोस्वामी का संगीत।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है कपिल कुमार ने, धुन बनाई है मानस मुखर्जी ने।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: रंग तरंग प्रोग्राम में अब पेश है दिलराज कौर की आवाज में मोहसिन नकवी का कलाम।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं जोनिता गांधी और शाश्वत सिंह का गाया हुआ साहिब का लिखा हुआ गाना समीरा कोपिकर का संगीत है।

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

रंग तरंग प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास की आवाज में ये गाना, प्रोफेसर जे के सतपाल के बोल हैं और अर्जन दसवानी का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना अनजान का लिखा ये गाना श्याम शर्मा की धुन थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाला और पायल देव का गाया हुआ ये गाना। रश्मि विराग ने लिखा है, पायल देव का संगीत है।

अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और स्वामी शैलेश का गाया हुआ ये गाना, जिसे लिखा है राज सागर ने, धुन बनाई है पवन मुरादपुरी ने।

रंग तरंग प्रोग्राम की आखिरी पेशकश श्रेया घोषाल, स्टेबिन बिन और पायल देव के साथ जावेद मोहसिन की आवाजें, सुनते हैं ये गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम के अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। ये हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और उसके संरक्षण का प्रयास करें। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं सीमा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

यादों की महफिल प्रोग्राम का अगला गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सुनवा रहे हैं फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीत के बोल इंदिवर के लिखे हैं और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

फिल्म मिलन का ये गीत सुनिए लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे माँ और ममता फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गाना। लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। लेकिन इस गीत से पहले ये संदेश।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: चला उस पथ

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे यादगार फिल्म का गाना, जिसे लिखा था इन दीवर ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सौदागर का गाना किशोर कुमार की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

हमारा संसार, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और हेमलता की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और आप सुनवा रहे हैं साजन की सहेली फिल्म का ये गाना, मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजें हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म का नाम है रिश्ता कागज का और आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

ये था यादों की महफिल कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप सबके साथ आज का सुरीला सफर तय करने के लिए हाजिर हूँ मैं राजुल। सभी को सादर नमस्कार। तो सबसे पहले हम बता देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वो इबारत जो हमारे श्रोता जो फेसबुक पर अभी नहीं पहुंच सके हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज की इबारत कुछ ऐसी है, इधर गर्मी का जलवा कम होने का नाम नहीं लेता और उधर जून का पूरा महीना ताक लगाए बैठा है। जब जी चाहे आंधी तूफान मचा देती है गर्मी, दो घड़ी भी चैन से नहीं बैठती। एसी कूलर कहाँ तक दिल बहलाएं, गर्मी दिन भर आग बरसाती है और रात में भी इसे नींद नहीं आती। छत पर चांदनी रात में भी चैन नहीं, हवा के झोंके भी गर्मी से बेचैन होकर छिप जाते हैं। गगरी सुराही बेअसर है, लाग बुलाने पर भी बादल की कोई खबर नहीं। गुस्से गर्मी के गुस्से से वो बेचारा भी डरता है, ये भी कोई बात है। धीरे धीरे प्यार से आए जाए तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, ये तो सरासर गर्मी की डॉनगिरी है। और आज की इबारत के बारे में हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आए। कुछ श्रोता कह रहे हैं कि अंतिम पंक्ति मस्त है और वैसे आपके संदेश और गीतों का सुंदर समावेश कुछ इस तरह होता है जैसे जुगनू और रोशनी, जैसे शहद और मिठास। वैसे एक दो संदेशों में नाराज़गी भी है कि फिर गर्मी की बात या फिर मौसम की शिकायत हो रही है। वहीं कुछ संदेश गर्मी की अधिकता से परेशानी के बारे में भी हैं। वैसे गर्मी के मौसम में गर्मी का असर तो दिखेगा ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज के दिन तो मौसम के बदले मिजाज का जिक्र करना ही है क्योंकि बदलती जलवायु से प्रभावित होती जैव विविधता की ओर ध्यान देना ही देना है। प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और इसीलिए हरी और जैव विविधता से भरी पृथ्वी के लिए मिलकर संकल्प लेते हुए शुरू करते हैं आज का सुरीला सफर। भाई देखना तो ये है कि हमारी लिस्ट से आपकी लिस्ट कितनी मैच करती है। वैसे जैव विविधता की बात हो रही है तो आसपास कौन से कीट पतंगे या पंछियों की आमद आजकल बढ़ी हुई दिखती है, या कौन से ऐसे जीव हैं जो अब कम दिखने लगे हैं? अगर आपने गौर किया है तो बताइए हमें। संदेशों की बात करें तो संदेश है आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की शुभकामनाओं और बधाई का, जिसे भेजा है हमारे एक श्रोता ने, बहुत बहुत बधाई। एक और बड़ा मजेदार संदेश है, हो जाते हैं शीत में सूरज दादा संत, गर्मी आते ही लगे जैसे क्रोध ही कंत। क्या बात है। एक संदेश में हमारी श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से बेहाल इंसान जब पहली ठंडी हवा छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद उसे दिलासा दे रही हो। बारिश की पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं बल्कि इंसान के मन को भी ठंडक देती है, थकान कम हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान लौट आ जाती है और फिर दिल फिर से नई उम्मीदों से भर जाता है। हाँ भरेगा, लेकिन अभी तो वो उम्मीद भरे दिन दूर हैं। और संदेश हमारे कुछ श्रोताओं ने भेजे हैं, हे गर्मी तेरा जलवा जिसने देखा वो तपिश से जल गया, देखते ही देखते भाई मई का पूरा महीना पूरा हो गया, वो एसी वो कूलर कहाँ से लाऊं, तेरी गर्मी जो याद जो भुला दे। गर्मी में दिन भर झुलसते रहे, रात भर करवटें बदलते रहे, गाते रहे ओ नींद ना मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुपके चुपके कोई आके फैन चला दे, एसी चला दे क्योंकि सुहानी चांदनी रातें हमें छत पे सोने नहीं देती। गर्मी इतनी है चैन से जीने नहीं देती, गुस्सा गर्मी का इतना हसीन जालिम है तो सावन कैसा होगा, नाग बुलाओ आ ना सकेगा बादल, कहने सुनने दिल की बात, लग रहा है चले आएंगे बादल, बिजली गरज के साथ जून के बाद अपने आप, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला जब से विविध भारती शरण में तेरी में आया। क्या बात है, इन्होंने तो बहुत सारे गाने पिरो दिए आज की इस संदेश की इबारत में।
याद किया है कविता को हमारी एक श्रोता ने। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना आता, हाथ सभी के पंखा रहता, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल। क्या बात है, बचपन की ये कविता इन्होंने याद की है। एक और संदेश है कि सूरज की प्रचंड किरणें इस समय धरती को भट्टी की तरह तपा रही हैं और सभी जीव जंतु केक की तरह बेक हो रहे हैं। प्रचंडता का आलम यह है कि धरती का मिजाज गर्म है और उसे ठंडक के लेप की जरूरत है। शायद विविध भारती के गीतों को सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो पहला गीत सुनवा ही दिया जाए, लेकिन वो सवाल याद है ना, कौन से कीट पतंग ज्यादा दिखने लगे हैं आसपास या बहुत कम हो गए हैं इन दिनों? और अगर बता सके तो ये भी बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है और संगीतकार कौन है। दो सवाल हैं आपको देने हैं इनके जवाब, तो जल्दी से आइए।

भाई जलवा शब्द से तो ये गाना हो गया, और हमारे कुछ श्रोताओं ने कहा कि तुरंत इस सवाल का जवाब भी दिया, शंकर जयकिशन का संगीत है इस फिल्म में। और बात अगर हो रही है जलवे की, तो गर्मी के जलवे को लेकर बहुत सारे संदेश भी हैं। वैसे एक श्रोता कह रहे हैं कि स्कूल में अनसीन पैसेज का एक प्रश्न हुआ करता था, वो भी शायद कुछ सरल होता था। आपकी पहेली तो कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। वहीं से शुरू करिए, अपने आसपास से देखिए जरा कौन से कीट पतंगे बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे हैं या बहुत कम हो गए हैं, कि हमारी जैव विविधता किस हद तक खतरे में है या कि सुरक्षित है, ये तो हम पता लगा ही सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कभी आंधी तूफान मचा देती है, चैन से बैठने भी नहीं देती, एसी कूलर से न दिल बहलता है, रात में न नींद, हवा पानी सब।

असर बादल भी नदारत प्यार से आना चाहता पर मुश्किल है। और इसके साथ इन्होंने कई सारे गाने भी लिखे हैं जो शायद आज की लिस्ट से काफी कुछ मैच भी कर जाए। एक श्रोता ने कहा है आप वाराणसी में 45 डिग्री है, जो किया है वो भी तो यही मिलेगा। 2008 में जब कॉलेज जाता था तब 42 डिग्री बहुत ज्यादा लगता था, पर कभी वो चुभा नहीं क्योंकि रोड के दोनों तरफ हरे भरे सघन वृक्ष होते थे जो जेठ के तपती दोपहर में भी जंगल और ठंड का काम करते थे। हर एक किलोमीटर पर एक हैंडपंप होता था जो आने जाने वालों के लिए अमृत समान होता था। महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्हें इस गर्मी में छांव भी मयस्सर नहीं, उन बेजुबानों के लिए जिनसे उनकी छांव छीन ली गई। सच में बहुत तेज जलती धूप में अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं, बस यही याद आता है। एक श्रोता कह रहे हैं ये गर्मी गर्म रेती ये पांव नाजुक अभी न जाओ पड़ेंगे छाले, आज का सुरीला सफर तो पूरा करना है तो चलिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं। शहरों में तो नल से पानी घर तक पहुंचता है मगर देहातों में आज भी पीतल की गागरी लेकर दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। तो हम चल पड़ते हैं उत्तर पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल कॉर्बेट पार्क जैसे ठंडे प्रदेशों में या घने जंगलों में या कश्मीर की वादियों में घूमने चलते हैं। आज का सुरीला सफर इन्हीं वादियों की याद में पूरा करते हैं। तो बताइए कि आप इनमें से किस वादी की याद हमारे साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपने कहा है तो आपकी कोई याद हो मीठी सी अगर तो जरूर बताइए। और एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी का जलवा जिसने देखा वो इससे दूर भाग गया, ना होगा वो किसी का ना कोई उसका होगा, वो ताक लगाए बैठा है आग बरसाने को, हम भी एसी कूलर लगाए हैं उसको मात देने को, दो घड़ी भी चैन नहीं आता है। ऐसे में गगरी सुराही अपनी साथी है, बादल आने जाने को है पर गर्मी उसे डराने को है, जून जल्दी जल्दी जाए तो जुलाई प्यार से आएगा, इससे भला किसी का क्या बिगड़ जाएगा। क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिख दी। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी तपिश में लिपटी है शाम और सिहरती चांदनी रात, बिखरा है फिजाओं में तेरी यादों का एहसास, धड़कनों को थाम कर जो बैठी है मेरी रूह, इस तड़प में भी घुली है तेरी मौजूदगी की छांव। तो अब अगला गाना, और आपको बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। और हाँ, जैव विविधता वाला वो सवाल भी कि कौन से कीट पतंगे आजकल ज्यादा दिख रहे हैं।

0: विस्तार से जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र कृष्ण मदन मोहन। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन की धुन, गेटवे ऑफ इंडिया मधुबाला भारत भूषण। और हमारे साथियों ने यह भी लिखा है कि जैव विविधता का पुरजोर असर प्रकृति पर और सभी प्राणियों पर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें अगर अभी से सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। और एक श्रोता ने अपनी एक यात्रा का भी वर्णन हमारे साथ साझा किया है। तीर्थन वैली की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर यादों में से एक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और कलकल बहती तीर्थन नदी ने मन को गहरा सुकून दिया। वहां की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने शहर की भागदौड़ बुला दी। गांव के लोगों का अपनापन और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता आज भी मेरी स्मृतियों में बसी हुई है। ये यात्रा केवल घूमने की नहीं बल्कि मन को शांति और नई ऊर्जा देने वाली एक अविस्मरणीय अनुभूति थी। वाकई ऐसी यात्राएं तो मन को एकदम ताजा कर देती हैं। और ताजा हो रहा है ये संदेश, गर्मी का मौसम प्रकृति के रूप रंग को पूरी तरह से बदल देता है। मौसम सिर्फ तापमान बढ़ने का समय ही नहीं बल्कि ये प्रकृति को संतुलित रखने की एक पूरी प्रक्रिया है। रास्ता चलते मुसाफिर को ठंडा पानी और पेड़ों की छांव ही सुकून दे सकती है। पक्षी भी दोपहर में घोंसलों में दुपक जाते हैं, सुबह शाम ही आसमान में उड़ान भरते नजर आते हैं। दिन तपते हैं तो रातें उमस भरी होती हैं, लेकिन उमस भरी रातों में चांद की चांदनी और रात रानी की खुशबू कुछ राहत देती है। गर्मी क्रूर जरूर लगती है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, पर यही गर्मी आने वाली बारिश का संकेत भी देती है। प्रकृति हर एक बदलाव के पीछे एक संतुलन छिपाए रहती है। बहुत सुंदर बात कही है आपने और इसी संतुलन को हमें संभाल कर रखना है। हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें की हैं। लिखते हैं कि गर्मी में ज्यादातर लोग परेशान तो होते हैं लेकिन इस मौसम का मजा बहुत है, कारण फलों के राजा रसीले और मीठे आम और फलों की रानी लीची का स्वाद तो प्रचंड गर्मी में ही मिलता है। वाकई एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल गिरने से उसका डिस्प्ले टूट जाने से मेरा मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और टाइपिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मोबाइल बीच बीच में बंद हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम से 3 दिन से नहीं जुड़ पाया हूँ। आज थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, शायद सफल हो जाए। बधाई हो, आप तो सफल हो गए, आपका संदेश हमें मिल गया। और हमारे कविता लिखने वाले श्रोता ने बड़ी ही सुंदर सी कविता भेजी है। तपती दोपहरी में जब सूरज अंगार बरसाता है, धरती की सूखी सांसों में गर्मी का मौसम गाता है। क्या बात है, पीपल की छांव तले बैठा थका मुसाफिर सुस्ताता है, दूर कहीं आमों के बागों से मीठा सावन याद आता है। कूलर की ठंडी सरगोशी, मटके का पानी प्यारा है, गर्मी चाहे जितनी चुभे बचपन इसमें भी न्यारा है। और छुट्टियों की इन्होंने बातें कही है और कहा है कि गर्मी केवल तपन नहीं, यादों की मीठी थाती है, जलते मौसम की बाहों में भी जिंदगी मुस्कुराती है। वाकई मुस्कुराते ही तो हैं वो जुगनू जो कि शाम को निकल आते हैं। देखिए आपने, बताइएगा हमें। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, और बताइए ये गाना आपकी लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।
1: झूमता मौत

फिल्म उजाला के इस गाने के लिए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अभी मस्त महीना नहीं, गर्मी का महीना है, लेकिन ये गाना तो बहुत सारी ठंडक लेकर आता है। मस्त महीने की बात ही कई बार मन को ठंड दे देती है। माला सिन्हा और शम्मी कपूर के साथ राजकुमार ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। हमारे साथियों का संदेश बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ श्रोताओं ने बताया है कि खूब पानी पीना चाहिए, जितना हो सके धूप में घर भर से ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो जाए और पंछियों को का भी ध्यान रखें तभी जितना हो सके। और एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी के दिन सुहाने होते हैं, आम पके कटहल गन्ने का रस से दिन अच्छे कटते हैं, मोगरे की सुगंध से घर आंगन महकता है। क्या बात है। मेघालय से के एक उसकी इन्होंने अपनी एक याद साझा की है कि डॉकी नदी जो विश्व की पारदर्शी साफ पानी की नदी है, वहाँ नौकायन का आनंद स्मरणीय था। थोड़ी दूर पर सीमा की बात इन्होंने की है कि भारत के एक पत्थर निशान था जिसके उधर ना हम जा सकते हैं और ना वहाँ से कोई और आ सकता है। और एक गीत मैच कर गया, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक श्रोता बता रहे हैं मच्छर चींटियां बहुत बढ़ गई हैं, और एक और श्रोता कह रही हैं कि हम लोग कमरे में सोते हैं एसी चलाकर, कल रात को बिजली रानी भी चली गई। आजकल के जैसे घर जिसमें बाहर से हवा नहीं आने पाती है, खिड़की खोलने पर भी बाहर से गर्म हवा ही आती है। रात के 3 बजे बिजली रानी आई तो थोड़ा सो लिए। इन्होंने टेम्परेचर की बात की है कि तापमान 43 डिग्री और दिन में और रात में 30 डिग्री चल रहा है। भोपाल के एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे शहर में दिन में भले गर्मी रहे लेकिन रात में बहुत राहत रहती है। हमारे घर पर छत पर गमले रखे हैं, उन पर भौरे, कबूतर, गौरैया, बुलबुल, टिटहरी और छोटी साइज के कबूतर भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। पंख वाली चींटियां, टिड्डे, भवरे आजकल कम ही दिखाई देते हैं, ऐसा हमारे एक श्रोता ने कहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके जीवन चक्र में परिवर्तन हो गया है। वाकई चिंता की बात तो है ये। और संदेश कुछ घड़े सुराही के भी हैं, हम पढ़ रहे हैं बस अभी। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अब केवल मौसम ही नहीं, एक जिद बन गई है, एक अविरल तड़प जिसकी ताल से घर, गली, छत, पट्टी सब थरथरा रहे हैं। गगरी, घड़े, सुराही, ठंडी पानी की बोतल, कूलर, एसी सब गर्मी के आगे नतमस्तक हैं। नील गगन के बादल भी किसी रूठे मेहमान की तरह हैं जो बुलाने पर नहीं आते, शायद गर्मी की डांट से टकराने का साहस नहीं करते। ये गर्मी किसी डॉन से कम नहीं वो अपनी मौजूदगी का ठप्पा हर क्षण बड़े आत्ममुग्ध अंदाज में जमा रही है। इस भीषण मौसम में खुद को हाइड्रेट और सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए अपने शहर का मौसम अपडेट और हीट वेव अलर्ट देखें। खुद को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और तरल पदार्थ लें। घर के अंदर ही सुरक्षित रहें, पर कई बार मजबूरी होती है घर के बाहर निकलना भी। सन्नाटे भरी सूनी सड़कों वाली अलसती दोपहर का ये महीना, और अभी तो जून का महीना आने को बाकी है, वो महीना तो गर्मी को चोटी पर पहुंचा देता है। कुदरत का नियम है, वो जिंदगी को सहेजने वाली चीजें जरा कंजूसी से ही बख्शती है हम सबको, इसलिए यह प्रकृति जितना भी देती है कम लगता है, और उसी के चलते मटके और सुराही का पानी हमें उतना शीतल नहीं लगता जितना हमें चाहिए होता है। हमें कुछ और की प्यास बनी ही रहती है, भले ये गर्मी की दादागिरी है, मगर इन दिनों को कभी बच्चों की उम्र में ढलकर उनके साथी बनकर, कभी थोड़ा बड़प्पन से तो थोड़ी समझदारी से बिताएं तो ये महीने खुशियों के दस्तावेज बन जाएंगे। वाकई क्या खूब बात कही आपने। तो चलिए खुशियों का एक और दस्तावेज इस गीत के साथ आपको बताने हैं कलाकारों के नाम।

भाई चैन और नींद तो गायब है ही। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस भरी दोपहरी में भी थोड़ी सी ठंडी की राहत मिल रही है, तो वो है विविध भारती के गानों की बौछार जो मन को शीतल कर रही है। सचमुच कुछ भी कहें, बचपन में धूप नहीं लगती थी, लेकिन जब से बड़े हुए तो हर मौसम महसूस होने लगता है। कुछ भी हो लेकिन पेड़ की छांव की बात ही कुछ अलग। पीपल की छांव के नीचे छोटी छोटी पानी की फुहार आती है जो बड़ा ही सुकून देती है। आपने कभी क्या ऐसा कोई पेड़ लगाया है जो कि खूब घना छायादार हो, जैसे पीपल या नीम? अगर नहीं लगाया है तो क्या लगाने की सोच रहे हैं, इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता ने भी यही बात कही है कि विविध भारती के मस्त गानों से जरूर ठंड मिल रही है, वैसे तो गर्मी से बुरा हाल है। एक श्रोता ने कहा है कि हम सब इतनी अच्छी तरह से घर में रहते हैं, पर हमारे फौजी भाई फुल गर्मी या सर्दी में अपनी ड्यूटी करते हैं। अब सवाल का जवाब, श्रोताओं ने बताया है फिल्म का नाम दिल, आमिर खान और माधुरी दीक्षित ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बिल्कुल सही जवाब है। और अब एक बारी है एक सवाल की, एक और सवाल है हम पूछते हैं आपसे कि अक्सर ऐसा होता था कि गर्मी में हवा बंद होने पर कई बार एक खेल खेला जाता था कि एक ही सांस में एक ही तरह की सात चीज़ों के नाम लो तो हवा चलने लगेगी। ऐसा होता था ना कि खूब सारे लोग छत पर सो रहे हैं, बच्चे हैं, और हवा बंद हो गई अचानक, और फिर ये हुआ कि चलो भाई कोई खेल खेलते हैं तो शायद नींद आ जाए। इस खेल में कई बार हवा चलने भी लगती थी और वो टोटका सफल माना जाने लगता था। तो बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा कोई खेल खेला है हवा को बुलाने वाला? अगर खेला हो तो हमें ज़रूर बताएं। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि खपरेल वाली छतों में आजकल सोने में बहुत अच्छा लगता है, हमने अपना बचपन इन्हीं छतों के नीचे गुजारा है। एक श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी से हम सभी इतने परेशान हैं कि हम चाहते हैं कि ठंडी हवाएं आएं। जून महीने की गर्मी का जून महीने में सोचेंगे, इस समय की हालत तो यह है कि दोपहर को चैन से सोने वाले की नींद उड़ गई है, जिया बेकरार है, बरसात के लिए कब रिमझिम बारिश हो और हमें जालिम गर्मी से छुटकारा छुट्टी मिले। ओहो, एक और श्रोता ने कहा है कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, दिल्ली में पारा 44 डिग्री से ज़्यादा चल रहा है, रातें बेहद गर्म हवा के साथ बीत रही हैं जिसका कारण है बिजली कटौती। टेरेस पर रखी 1000 लीटर की टंकी का पानी भी ऐसा हो जाता है जैसे गीजर से पानी आ रहा हो, बाप रे। ऐसी भरी गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते कुछ बेहद शानदार गाने सुनने को मिल जाए तो क्या कहने। कर्मस्थल पर भी बेहद गर्मी हो रही है, कार्य चल रहा है, इसी बीच कुछ पंक्तियाँ याद आ गई जिन्हें साझा कर रहा हूँ, जो कक्षा 4 में पढ़ी थी। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में ये ठना। वाह, ये तो वीर रस के साथ साथ एक गर्मी को भगाने वाली कविता भी लग रही है, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक और श्रोता ने कहा है, आजा मेरी जान यह है जून का महीना, हालांकि अभी जून आने में लगभग एक सप्ताह की देर है, फिर भी हाँ जून का महीना जब आएगा तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी मई की बात कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हम बात कर रहे हैं गर्मी के चलते, जो बढ़ती गर्मी के बीच में हम पेड़ों की छांव से दूर होते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म का नाम क्या है और संगीतकार कौन है। और हाँ, उस खेल के बारे में भी ज़रूर बताइएगा जो हवा को चलाने के लिए हम बच्चे कभी कभी खेला करते थे या आप बचपन में कभी खेलते थे।

जी हाँ, दिल नादान फिल्म का ही ये गीत है। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजा। खयाम का संगीत है, नक्श लालपुरी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने ये गाना सुना और जवाब दिया है काफी सारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया है कि जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे, और एक और श्रोता ने बताया है कि जब बिजली चली जाती थी बचपन में तो हम बच्चे 1, 2, 3 गिनती शुरू करते थे कि शायद 10 गिनते बत्ती आ जाए, टोटका कभी कभी सफल हो जाता था। क्या बात है। और एक बहुत ही प्यारा सा संदेश है, पूर्वा के साथ बेटा, अर मल तर मल छूरी कतर मल नेक धर्म पूर्ण प्रताप, चलो ओ पूर्वा झर झर बतास, ऐसा बोला जाता था। मैं कहूंगी तो आप सब हंसेंगे, पर सचमुच जैसे ही बड़े लोग इस बात को बोलते थे हम भी साथ साथ बोलते थे और हवा बहने लगती थी। क्या बात है। जालंधर के तापमान के बारे में बताया है हमारे एक श्रोता ने, 40 डिग्री, बापरे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस वक्त तो टंकी में पानी सूरज उबाल उबाल के रखता है। सही बात है। पीला कनेर लगाया हुआ है घर के बाहर एक श्रोता ने, जिसकी छांव में कभी गांव गाय आकर बैठ जाती है, और गुलमोहर 25 साल पहले लगाया था, आज बड़ा होकर छाया दे रहा है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने बताया है। एक श्रोता कह रहे हैं कि इस इतनी गर्मी को देखकर भी हम इंसान क्यों नहीं समझते कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 ही पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, उसका लाभ हमें और हमारी अगली पीढ़ी को मिलेगा। यदि हम प्रकृति से सिर्फ लेते ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, कुछ तो हमें भी देना ही पड़ेगा। मतलब पेड़ लगाना और जितना हो सके पानी बचाना, बिजली बचाना, जहां गाड़ी की जरूरत ना हो वहां पैदल जाना, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना, खाना वेस्ट ना करना, और भी कई चीजें हमें प्रकृति की दे सकते हैं। तो सब तैयार है ना इस बरसात में 1 या 2 पेड़ लगाने के लिए? बताइए बताइए, जल्दी से तैयार है ना। गर्मी का मौसम निदाक काल कहा जाता है। यहाँ निदाक का शाब्दिक अर्थ तपन या फिर प्रचंड ताप से है। हिंदी माह ज्येष्ठ और आषाढ़ में सूर्य के ताप की प्रचंडता तीव्र हो जाती है। गर्मी ऊर्जा और प्रकृति का चक्र भी है, मानव मन की भावनाओं एवं तपस्या का चरम रूप भी है। वाकई बहुत बड़ी तपस्या है गर्मी तो। और एक और श्रोता ने कहा है कि आधुनिकता के बदले परिवेश में गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। कट्टे जंगल, बड़े बड़े दरख्त इतनी निर्ममता से काटे दिए जाते हैं जिसका बदला प्रकृति इस तरह से ले रही है। घरों, ऑफिस, कारों के एसी से निकलने वाली गर्म हवा वातावरण को और भी गर्म कर देती है। जब एसी कूलर नहीं होते थे तो और तरीकों से घर ठंडे रखे जाते थे। बताइए तो जरा वो कौन से तरीके हैं। और हाँ, ये गाना सुनिए और बताइए कि गीत किसने लिखा है और संगीत किनका है।

फिल्म चार मीनार का ये गाना है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आशा भोसले की आवाज। विश्वामित्र आदिल के बोल थे और शार्दुल क्वात्रा का संगीत था। एक श्रोता ने कहा है, गर्मियां इतनी भी बुरी नहीं होती, इस समय फसल कटकर घर आती है, लोग साल भर के लिए गेहूं चने दालें मसाले आदि संग्रह करके रखते हैं, तेज धूप में ये सब अच्छी तरह से धोकर सुखा लिए जाते हैं। याद आता है बचपन का वो घर जहाँ पीछे आंगन में आम का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे चटाई बिछा कर हम किताब हाथ में लिए या अष्टाचंगा खेलते हुए पूरी छुट्टियां बीत जाती थी। बिल्कुल नहीं बुरी होती गर्मियां, बल्कि हर मौसम का अपना महत्व होता है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि गर्मियों से बचने के जो साधन हम पहले कर पाते थे, अब वो नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे पेड़ नहीं हैं, बहुत सारी बातें कम हो गई हैं, और जो जीवन का रुख बदला है तो उसमें बहुत सारी चीजें जीवन से गायब हो गई हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्मियां तो आना जरूरी है, क्योंकि मौसम का चक्र कैसे पूरा होगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि बचपन में मिट्टी के घर को गोबर लीप कर ठंडा किया जाता था, मटके के नीचे बालू और गीला कपड़ा उढ़ाकर ठंडा रखा जाता है, बचपन में सबसे ठंडा गाय के गोहाल में लगता था। ओहो, ये तो उन्होंने नई बात बताई। वैसे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हर वर्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसका नतीजा अभी तक नहीं निकल पा रहा है, पता नहीं क्यों। भाई, पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों की देखभाल भी तो करनी ज़रूरी होती है, और छाया देने वाले पेड़ बड़े तक बड़े होने में तो थोड़ा समय लग ही जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि जून की तपिश ने तो जैसे जून तो नहीं भाई, ये तो मई चल रहा है, मई की इस तपिश ने तो, हम इसको सही करके पढ़ लेते हैं, जैसे पूरे शहर को बंधक बना लिया है। सूरज देवता सुबह होते ही अपना रौद्र रूप लेकर निकल पड़ते हैं, मानो किसी से पुराना बदला ले रहे हों। दोपहर की तो बात ही छोड़िए, शाम ढलने के बाद भी दीवारें आग उगलती हैं, ठंडे पानी से नहाओ तो लगता है खोलते हुए कुएं में डुबकी लगा ली। पंखे और कूलर भी अब हार मान चुके हैं, वो तुम्हें बस गर्म हवा के थपेड़े ही बांट रहे हैं। पेड़ पौधे बेजान होकर सिर झुकाए खड़े हैं और परिंदे छांव की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मौसम की बात कही है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि पर प्राकृतिक सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, यही है कि आम का पना पिए, सतुआ खाएं और ठंडा ठंडा शरबत पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, गर्मी को दूर करते रहें। बिल्कुल सही बात है, गर्मी को दूर रखने के उपाय करते रहें, और उन लोगों के लिए भी उपाय करते रहें जो गर्मी से इतनी जल्दी बच नहीं सकते। तो अब ये अगला गाना बताइए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि गर्मी खराब है या गर्मी बहुत ज़्यादा होना बुरी बात है, बल्कि गर्मी अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आएंगे आसमान में काले काले बादल, और कैसे छुपेगा ये जो गर्मी के प्रकोप से भटी हुई धरती का जो कलेजा है, वो कैसे छुपेगा हरियाली से। आपको बताना है फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।

भी 10 बजे से ही खिड़की दरवाजे सबको बंद कर दिया जाता था। खिड़की पर मोटे सूती पर्दे लगा दिए जाते थे और कुछ अजब टाइप की चटाइयाँ आती थी, उन्हें भी कर टांग दिया जाता था। अगर चटाइयाँ नहीं है तो मोटे कपड़े टांग दिए जाते थे और उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। नीचे ज़मीन में पोछा लगा कर ही दोपहर में सोया जाता था और शाम को फिर छत और आंगन को धो दिया जाता था। वो भी दिन थे। और अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और आवाज़ किन की है।

फिल्म कादंबरी का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना और असली नकली फिल्म के गाने के लिए हमारे श्रोताओं ने बताया है कि ये गीत संध्या नाम की कलाकार पर फिल्माया गया है जो फिल्म में अनवर हुसैन की बहन बनी है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और हो भी क्यों ना, सब सारे मौसमों का अलग अलग महत्व है और तरह तरह के पेय पदार्थ इन्होंने बताए हैं कि वो पीकर हम अच्छी तरह से गर्मी बिता सकते हैं। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि गर्मी आज की बारिश शायद प्रकृति और मौसम पर हो, कहीं पर तेज़ और भयंकर गर्मी पड़ रही है तो कहीं पर झमाझम बादल बरस रहे हैं। हम भी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। अभी कल रात को भी हमारे यहां बारिश हुई जिससे मौसम और भी सुहाना हो गया। तो बताइए ना, ये अंदाज मौसम का क्या बदला नहीं लगता। और इस तरह के अंदाज के साथ क्या ये बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि जैव विविधता के अनुपस्थिति में ही हम इस तरह की जो मुश्किलें हैं वो झेल रहे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बहुत सुहावना हो गया है, गर्मी की तपिश में आज सुकून की पानी की बूंदें बरसी और तन मन को ठंडा कर गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। और अब कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे ले रही हूँ इजाज़त। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 29वीं कड़ी।

1905 में बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान समाज एकजुट था। इतना ही नहीं, उसी आंदोलन के समय वंदे मातरम गीत प्रसिद्ध हुआ। इस आंदोलन में लड़ने वाले मौलवी मोहम्मद अकरम खान, मौलवी शमशद हुदा, मौलवी दीन मोहम्मद जैसे कई लोगों ने वंदे मातरम का समर्थन किया था। उनमें से मोहम्मद अकरम खान जैसे उच्च शिक्षित धर्मगुरु स्वयं इस आंदोलन के प्रमुख नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के साथ वंदे मातरम गाते थे। वंदे मातरम पर पहली पाबंदी मुसलमानों ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने ही लगाई थी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय 7 अगस्त की सभा में वंदे मातरम ने युद्ध गर्जना का रूप ले लिया और बंगाली जनता ने इसे किसी तेज धार हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि इन दो शब्दों ने ब्रिटिश सरकार को भयभीत कर दिया। 7 अगस्त की विराट सभा के पश्चात एवं 16 अक्टूबर को लागू हुए बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद अगले ही महीने 8 नवंबर को विभाजित बंगाल के नवनियुक्त गवर्नर फुल्लर के सचिव पीसी लियोन ने एक परिपत्र जारी किया था जो लियोन सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। वंदे मातरम पर पाबंदी के इतिहास में ये पहला हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे में भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का प्रयास साफ दिखाई देता है।
1: टू द कमिश्नर ऑफ द ढाका डिविजन, सर, आई एम डिजायर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इन्फॉर्म यू दैट इंसिडेंट्स हैव रिसेंटली अकर्ड विच इंडिकेट दैट द शाउटिंग क्राई वंदे मातरम इन द स्ट्रीट्स और अदर पब्लिक प्लेसेस।
2: प्रति विभागीय आयुक्त ढाका, महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे संकेत मिलता है कि सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर वंदे मातरम का नारा लगाने से शांति भंग होने की संभावना है। इसलिए इस पर उचित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। इस कारण से पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इच्छा के अनुसार मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि वर्तमान जनभावना की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक या अर्ध राजनीतिक सभाओं की अनुमति न दी जाए।

0: हालांकि वे बंद परिसरों में आयोजित की जा सकती हैं। यदि जुलूस या ऐसी सभाएं अनुशासित हों, तो उन्हें सड़कों से गुजरने की अनुमति दी जाए, परंतु उनमें गाना या नारे लगाना नहीं होना चाहिए। यही आदेश संकीर्तन मंडलियों पर भी लागू माना जाए। श्रीमान फ्यूलर ने यह भी सूचित किया है कि कुछ स्थानों पर अंग्रेज महिलाएं स्टेशन रोड से अपमान या परेशानी उठाए बिना गाड़ी में नहीं जा सकती। प्रशासन पर लगा यह गंभीर कलंक पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। सड़कों पर गश्त की नीति को यदि आवश्यक हो तो मजबूत किया जाए, और जहां यूरोपीय लोगों या मुसलमानों के साथ अशिष्ट व्यवहार किया जाए, वहां हस्तक्षेप करने, नाम पता दर्ज करने और इनकार करने पर अपराधी को थाने ले जाने के आदेश दिए जाएं। प्रमुख सचिव पीसी लियोन
1: एंड इफ द लैटर आर रिफ्यूज्ड कंडक्टिंग ऑफेंडर टू थाना Secretary P.C. Leon.
2: वंदे मातरम पर पाबंदी लगाते समय मुस्लिम समाज के मन में वंदे मातरम के प्रति संदेह और दूरी पैदा करने का प्रयास सबसे पहले इसी हुक्मनामे के द्वारा किया गया। बारिसाल के अधिवेशन में वंदे मातरम कहने वाले आंदोलनकारियों पर फुल्लर के आदेश से जो अमानवीय लाठीचार्ज हुआ, उस बारिसाल अधिवेशन के अध्यक्ष अब्दुल रसूल मुस्लिम ही थे। फुल्लर के इस आदेश का मुस्लिम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टे फुल्लर की कार्रवाइयों के कारण सभी ओर से उन पर आलोचना होने लगी। फुल्लर के कारण ही ब्रिटिश सरकार की छवि मुस्लिम समर्थक नीति अपनाने वाली सरकार जैसी बनने लगी।
0: बंग भंग विरोधी आंदोलन में पूर्व बंगाल के नवाब मोहम्मद हुसैन के बेटे मोताहर हुसैन ने अश्विनी कुमार दत्त के साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। उन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम किसानों ने वंदे मातरम पाबंदी के विरोध में नारे लगाते हुए जुलूस निकाले। लाला लजपत राय ने पंजाब में उस दमन चक्र के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जो फ्यूलर ने बंगाल में चला रखा था। एक सभा में वे स्पष्ट रूप से बोले,
3: वंदे मातरम नारे का मुसलमान विरोध करते हैं, इसलिए सार्वजनिक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ये उपाय कर रही है। ये परेशानियों से बचने के लिए दिया गया एक झूठा तर्क है। एक भी मुसलमान ने वंदे मातरम की पाबंदी का समर्थन नहीं किया है।

0: मद्रास में एक घटना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थानीय मुस्लिम नेताओं की उपस्थिति में इसी तरह का आह्वान किया था। 1905 में ही कलकत्ता के पास एक ब्रिटिश नागरिक के मालिकाना हक वाली फोर्ट ग्लॉस्टर मिल नाम की कपड़ा मिल थी। कुछ असंतोष के कारण कामगारों ने वहां के अंग्रेज अधिकारियों के सामने वंदे मातरम के नारे लगाए। मालिक ने तत्काल कार्रवाई की। इससे गुस्सा होकर शाम को मिल छूटते समय लगभग 9000 मजदूरों ने एक साथ वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक ने जिला पुलिस अधीक्षक को भी बुला लिया। कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किया गया।
1: उसके बाद वंदे मातरम पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए उन मजदूरों ने एकजुट होकर हड़ताल की। बंगाल में अब शिक्षित ही नहीं बल्कि कामगार वर्ग और गांव देहात का समाज भी वंदे मातरम के प्रति जागरूक हो गया था।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है। जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 29वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: विचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव दो दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की

0: कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के दूसरे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है देश का सबसे

नमस्ते लोकप्रिय चैनल विविध भारती, प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

बसंत बहार फिल्म का ये गाना आपने सुना, भीमसेन जोशी और मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत था। सच बसंत बहार फिल्म के इस गीत के साथ ही तो जैसे फूलों की रह गुजर खुल गई, सदा बहार गीतों का ये रास्ता अब फंटूश फिल्म के इस गाने की ओर ले चला है। आशा भोसले की आवाज में सुनवा रहे हैं साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, जिसे सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

Mamma.

0: फूलों की इस खुशबू को कुछ और साथ लेकर चलते हैं, जन्म जन्म के फेरे फिल्म के इस गाने के साथ। लेकिन इस गीत के पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बारिश फिल्म का ये गीत पंछियों की उड़ान लेकर आया। लता मंगेशकर और चितलकर रामचंद्र की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना, जिसे शुरू में पिरोया था चितलकर रामचंद्र ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं चंपाकली फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: बड़ा भाई फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले और तलत महमूद का गाया हुआ। गीत लिखा प्रेम सक्सेना ने और धुन बनाई नौशाद ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बहानी खिली तनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नई दिल्ली फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत से सवारा था। ये गीत ही बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: आज शुक्रवार है और आप कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम हेलो सहेली।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम हेलो सहेली का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती है। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है, तो और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं, तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ। उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह करवाना, फिर उन लोग को नाश्ता कराना। ये सब
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी जी, बेटा बड़ा है जी और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई भी करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोकनी का जो होता है वो सब बनाती हूँ। और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज। ये
0: जी क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो
0: जी,
1: थानेदार फिल्म।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी ने मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सगी सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: ब्यूटीशियन
0: है, बहुत अच्छी बात है ये। आप यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती है ना?
1: जी दीदी,
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ जो लाइना आपके लिए, हम वो नहीं जो मतलब से प्यार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, मेरे सीने में मेरा दिल धड़े सी, मेरे सीने में तेरा दिल जान ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: दोस्तों सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी दो दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ, बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी,
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी।
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी,
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम ले वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा जाता है।
1: हाँ,
0: जी, जी। तो जो आपने बताया गैस पर केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती है केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी जिसके पास ओवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले
0: जी,
1: चाहे कोई पतीला ले
0: जी,
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए 1 किलो नमक
0: जी,
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिससे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं, और उसके बाद जो बेकिंग डिश है जो एल्युमिनियम की आती है बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं, अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है, और फिर जब इसको ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए बिल्कुल अपने मन मुताबिक, आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज बताई है। और संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए। हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था, शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है,
0: उसने
1: ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था।
0: क्या बात है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारे विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से?
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा इतना बज गया ये आएगा।
0: हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलाम इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूं, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए, हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने
0: जी।
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी
0: जी।
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी, मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात।
1: और हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना, पहले जो चलता था यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है, आप कहीं भी बैठे रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई। लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे। तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है
0: जी। जी जी
1: हाँ।
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे, बचपन बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही बात है।
1: ससुराल भी बहुत अच्छी मिली, सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है ना, हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे हम।
0: क्या बात है, गाने की महफिल लग जाती यानी आपके घर में।
1: और सभी सिंगर है हमारे, देवर वगैरह सब अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं
0: जी,
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है। मेरा बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ।
0: क्या बात है।
1: हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 इयर्स की हूँ अभी
0: जी जी।
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसे मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है
0: जी,
1: दोनों बच्चे, उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी, मतलब फ्री है एकदम
0: जी।
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस सब के लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है, आपने बताई मुझे, बड़ा अच्छा लगा।
1: मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा गाना?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी
0: जी,
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई, है ना अनु जी?
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है, तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश
0: जी जी,
1: साया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें
0: जी।
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा।
0: क्या बात,
1: सारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: जी बिल्कुल। नाम

0: मैं अपने परिवार का नाम लेना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए अपने परिवार का नाम।
0: मैम मेरे हस्बैंड का नाम विकास अग्रवाल है
1: जी।
0: और मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ रेडियो के जरिए। और मेरी सास का नाम सुमन है
1: जी।
0: मेरे ससुर का नाम महेंद्र है और मेरे देवर का नाम विशाल है। और मेरे जो मायके में मेरे पापा का नाम धनराज कुकरेजा है
1: जी जी।
0: मेरी माँ का नाम फूला है और मेरे भाई का नाम अमित सुमित और भाभी का नाम संतोषी और उनके बेटे का नाम शिवा। ये है मेरा समस्त परिवार।
1: आपके परिवार के नाम जानकर बहुत अच्छा लगा। अपने पतिदेव को हमारी तरफ से वेद भारती परिवार की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: राम लखन फिल्म का गाना सुनना है और वो है 1-2-4 माय नेम इज लखन।
1: तो लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हम बिहार से किशनगंज जिला से बोल रहे हैं
0: जी। आपका नाम क्या है?
1: जी, मेरा नाम आशिया नाज है।
0: आशिया नाज, बिहार में हैं आप रहती, तो बिहार के बारे में कुछ बताइए।
1: बिहार अच्छा ये राज्य है
0: जी,
1: यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है।
0: आशिया जी, बिहार के जो खान पान है, जो वहाँ की चीजें स्वादिष्ट बनती हैं, उनमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है बिहार का?
1: ये सबसे ज्यादा पसंद आता है दाल चावल, गोलगप्पे खाना पसंद है।
0: क्या बात है। तो चलिए अर्शिया जी, बताइए कि आज आप कौन सा गाना हेलो सहेली में सुनना पसंद करेंगी?
1: हिना फिल्म का है।
0: हिना फिल्म का,
1: और गाने का भूल है मैं हूँ खुश
0: रहूंगी। क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने पसंद किया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दक्षा जहाँ, आपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर
0: जी।
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो सहेली और हेलो फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज के मेहमान सब कार्यक्रम सुनती हूँ मैं।
0: तो दक्षा जी, आज आप क्या सुनना पसंद करेंगी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना हमारे दादाजी की पसंद का, जैसे जब भी फोन लगाते हैं तो वो कहते हैं रेडियो जैसे हम लोग सुनते हैं
0: जी,
1: तो वो बोलते हैं कि ना मेरी पसंद का भी गाना सुनो कभी, तो उनकी फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल बताइए अपने दादाजी की पसंद।
1: वादियाँ मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
0: तो दक्षा जी लीजिए, सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का वादियाँ मेरा दामन, ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है हेलो सहेली में आकर।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम, त्रिवेणी, काया गीत, ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है,
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा, प्रासंगिक कविता मराठी में लिखती हूँ
0: जी,
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और हाँ, तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियाँ सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी हेलो सहेली। ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी।
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली ने स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता, आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
0: आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगे सुनना?
1: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पार।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

0: आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867 0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867 0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थीं। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।
2: बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुख

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़ककर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था। वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था। कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जा यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगे और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो ये है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहाँ क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी की जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूँ।

मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें ये पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस

तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो, संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसकी गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ। बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे। उनकी हार होगी, तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ा कर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी, बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

संत बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूँगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आएं और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

भूतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

विविध भारती के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पिंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंडारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये पूर्ण

0: गंगरी सकालो सरगवा गुल्हाड़ी पड़ौली अमड़ी किशुनपुर मिर्गाडाड़ मनोहरपुर पंडरीपानी डाड़ गांव बरवाली बरडाड़ दातीढाप कंडराजा बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थल गांव तपकरा और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर रानी कोम्बो कुंजारा लोटापानी मयूर चूंदी बरटोली खड़ामाचा राजा आमा झिमकी चट्टान पारा महुआडी खुटसेरा पतेबहाल झिक्की खंताडाण परसाडाण पेटा सामर बार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 141 है। ये गिरसा पोटिया आमगांव रुपुंगा तेजपुर बेहरामार बनहर औरानारा पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी नवापारा सरायपाली गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत कोठारी गुड़ागढ़ फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजय डडई पानी बुडार सिहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोठ।

0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर 5:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का समय होगा 5:30 का। 6:20 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए। आप सुनेंगे दो भागों में, 6:20 से 6:45 और शाम 7:00 से 7:20 तक। किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है सतत आय का साधन साग सब्जी उत्पादन और बदलते मौसम में बगीचों की उचित देखभाल, यह है विषय आज की नसीहत का। 8:20 पर गैर फिल्मी गीत हम लेकर आएंगे। फिल्म संगीत का समय होगा 8:30 का। 9:00 से 10:00 तक विविध भारती के कार्यक्रम विविध संगीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। अब एक नज़र कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:10 पर 6:40 पर रामचरितमानस भाग 20 का प्रसारण आप सुनेंगे। कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड, आप इस कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे सुबह 7:05 पर। फिस्टूला उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भेंटवार्ता आप सुनेंगे। 8:30 पर आकाशवाणी रायपुर से कार्यक्रम डॉक्टर के सलाह का अनुप्रसारण होगा। 9:10 पर पद्म पुरस्कार पर आधारित पॉडकास्ट का 30वां भाग आप सुनेंगे। सुगम संगीत हमारे केंद्र से प्रसारित होगा 10:10 पर। 10:30 पर आपके पसंद के फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। 11:00 से शाम 5:00 तक आप रहेंगे विविध भारती के साथ। इस बीच 11:55 पर आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आप सुन सकेंगे। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में मैथिली ठाकुर के स्वर में कवि नारायण अग्रवाल का लिखा ये भजन सुनिए। संगीतकार हैं उत्तम सिंह।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 तोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संडली।

0: पुष्पेंद्र पांडे का लिखा, संगीतबद्ध किया और गाया गीत अभी आपने सुना। इस भजन के बाद ये जो अगला भजन है इसे मान्या अरुणा ने गाया है। शुभम रूपम का लिखा ये भजन बाबा गुलजार के संगीत पर आप सुनेंगे इन संदेशों के बाद।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मान्य अरोड़ा के गाइस भजन के साथ ही अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में अमित त्रिवेदी के संगीत से सजा काई पोचे फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और आवाजें हैं श्रुति पाठक और दिव्या कुमार की।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

ये आवाज़ें थीं संगीत हल्दीपुर और शिल्पा राव की, अमिताभ भट्टाचार्य की बोल और सौरभ शुक्ला का संगीत था। फिल्म थी पप्पू कांडांसाला। आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे वेकअप सीड, इस फिल्म से। आवाज़ क्लिंटन सेरेजू की है, जावेद अख्तर की बोल है और शंकर एहसान लॉय का संगीत। इसे आप सुनेंगे इन संदेशों के बाद।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: आरती,
7: आकाशवाणी @90।
8: मैं रिनिका रॉय श्रीकुंज कॉलोनी बोई दादर की निवासी हूँ। मैं रेडियो फोन के माध्यम से सुनती हूँ। 90 वर्षों का यह गौरवशाली सफर सिर्फ समय की गिनती नहीं या विश्वास संस्कृति और संवेदना की धड़कन है। जब जब देश ने नई सुबह देखी तब तब तुम्हारी आवाज ने उसे शब्द दिए। कभी समाचार बनकर सत्य की राह दिखाई, कभी संगीत बनकर मन को सुकून पहुंचाया, तो कभी किसानों विद्यार्थियों और जन जन के साथी बनकर ज्ञान की ज्योति जगाई। रेडियो की वह मधुर धुन जो घर घर में अपना पन खोल देती है आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहली बार सुनाई दी थी। 90 वर्षों की यह यात्रा परंपरा और प्रगति का अद्भुत संगम है। अपने पीढ़ियों को जोड़ा, देश की विविधता को एकता में पिरोया और हर दिल में भरोसे की आवाज बनकर बसे। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम सब की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी आवाज यूं ही सदियों तक गूंजती रहे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: ये गीत जो भी आपने सुना, इसे हमने आपको सुनवाया। फाइंडिंग फैनी फिल्म का ये गीत, मुख्तियार अली का लिखा गीत और आवाज़। इस गीत को संगीतबद्ध किया मथियास डुप्लेसी ने। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है टॉम डिक एंड हैरी फिल्म से। आवाज़ हिमेश रेशमिया की, संगीत हिमेश रेशमिया का और गीतकार समीर। ये गीत इन संदेशों के बाद।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

हिमेश रेशमिया और अहीर की आवाज़ें थीं इस गीत में, जिसे हमने लिया था टॉम डिक एंड हैरी फिल्म से। समीर की बोल और हिमेश रेशमिया का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर।

यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 14.7 MHz पर। 6 बजने को हैं। अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था

0: ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz पर 6:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में पहले हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिए। कार्यक्रम विवरण के ठीक बाद 6:10 पर प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार के बाद हमारे केंद्र से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए 2 भागों में 6:20 से 6:45 और शाम 7 बजे से 7:20 तक। किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे शाम 7:20 पर। कार्यक्रम में आज की बात का विषय है सतत आय का साधन साग सब्जी उत्पादन और बदलते समय में बगीचे की उचित देखभाल। यह विषय आज की नसीहत का। 8:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। फिल्म संगीत का समय होगा 8:30 का। 9 बजे से 10 बजे तक आप रहेंगे विविध भारती के साथ। कार्यक्रम विविध संगीत का समय होगा रात्रि 10 बजे का। और 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये थी जानकारी हमारे आज के प्रसारण के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के प्रसारण के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:40 पर रामचरितमानस भाग 20 का प्रसारण आप सुनेंगे। कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 7:05 पर। 7:35 पर प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का प्रसारण होता है। प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे 7:45 पर। 8:30 पर आकाशवाणी रायपुर से कार्यक्रम डॉक्टर के सलाह का अनुप्रसारण होगा। पद्म पुरस्कार पर आधारित पॉडकास्ट का 30वां भाग आप सुनेंगे 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से। 9:35 से 10 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। कार्यक्रम सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:10 पर। 10:30 पर आप सुनेंगे अपने पसंद के फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश 11 बजे से शाम 5 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। इस बीच 11:55 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होगा। शाम 5 बजे हमारे केंद्र से प्रसारित होता है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम का समय शाम 5:10 का। 5:30 पर शहरी महिलाएं अपना कार्यक्रम वनिता विहार सुनेंगी। कार्यक्रम में आपस की बात का विषय है नशे के बढ़ते प्रभाव और परिवार पर इसके दुष्परिणाम। योजना के बारे में आप जानेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। फिल्म संगीत का समय होगा शाम 6:20, शाम 7 बजे और रात्रि 8:30 का। शाम 7:20 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम किसानवाणी सुनेंगे। कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा सब्जियों में जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग में रखें प्रतीक्षा अवधि का ध्यान और भविष्य की समृद्धि और पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण, यह विषय आज की नसीहत का। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:20 पर। 9 बजे से 10 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम विविध संगीत का समय रात्रि 10 बजे का और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी आप सुन रहे थे।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:10 होने को हैं। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
3: पारदर्शिता और शिकायत मन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे केंद्र के स्थापना करे है। औ दुर्ग जिला में एक ठिन मकान ले दंपत्ति और ओखर दू झिन लैका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 23 मई के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 जगामन में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मन ला नियुक्ति पत्र प्रदान करही। इही कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डहार ले रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। रोजगार मेला में 257 युवा मन ला नियुक्ति पत्र दे जाही। इमा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिला के ग्राम करही बाजार पहुंचीं। इस दौरान मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान करीं। संग्रह मुख्यमंत्री पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार ले भेंट करीं। उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंच के मुख्यमंत्री धात्री महतारी मन ला किट घलो प्रदान करीं। ए मौका में मुख्यमंत्री स्कूल मन के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाए समेत आने आने घोषणा करीं। एकर पहली मुख्यमंत्री काली सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारी मन के बैठका में पीए के पानी के समस्या और स्कूल परीक्षा परिणाम लेके नाराजगी जताईं। ओमन कोरिया जिला में खातु वितरण में गड़बड़ी आगू आए में सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्था आयुष प्रताप सिंहला तत्काल प्रभाव ले निलंबित करे के निर्देश दिन। यही बीच कोरिया जिला के जिल्दा समिति खड़गवा में खातु वितरण ले जुड़े गबन प्रकरण में दोषी मन के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाए में प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी ला घलो निलंबित कर दे गए है। राज्य सरकार है खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायतमन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र के स्थापना करे है। ये पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी करे गए है। इन नंबर में आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितता के शिकायत सीधा दर्ज करा सके। सूचना केंद्र के संचालन हरेक दिन बिहानिया 10 बजे ले संझा 5:30 बजे तक करे जाही। नीति आयोग डहाले जारी देश के आकांक्षी ब्लॉक मन के चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिला के उसूर ब्लॉक सेंट्रल जोन में देश भर में दूसर स्थान हासिल करे है। आयोग स्वास्थ्य और सामाजिक विकास ले जुड़े कई ठिन संकेतक के आधार में मूल्यांकन करे रही जेमा उसूर ब्लॉक के प्रदर्शन उत्कृष्ट पाएगीज। ये उपलब्धि में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप है जिला के नागरिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जिला प्रशासन ला बधाई दिन है। सहकारिता विभाग के आयुक्त महादेव कावरे है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले विभागीय योजना और काम के समीक्षा बैठक लीन। सहकारिता आयुक्त श्री कावरे है अधिकारी मल्ले कहन कि किसान मल्ला बेरा में खातु उपलब्ध कराना शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता है। एकर बर ओमन जम्मो पैक्स समिति में पर्याप्त मात्रा में खातु के आगूले भंडारण सुनिश्चित करे बर कहन। ओमन खातु के उपलब्धता और वितरण के नियमित रूप ले समीक्षा करे के निर्देश दिन। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल डहाले प्रदेश के जम्मो डाकघर में अवैया 25 और 26 मई के अल्प बचत खाता खोले बर विशेष अभियान चलाए जाही। इस दौरान कोनो भी नागरिक अपन नजदीकी डाकघर जाके या राज्य सरकार डहाले नियुक्त अधिकृत एजेंट के माध्यम ले अल्प बचत योजना जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या और कोनो योजना में निवेश कर सकी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
4: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
3: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कुती। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ए बखत बस्तर संभाग में नक्सलवाद के सिराय के बाद स्थानीय लोगन तक विकास के रोशनी पहुंचाए बर सरकार डहाले करेगे अभिनव पहल ऊपर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ले गए विशेष भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 23 मई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी अंबिकापुर डहाले काली बिहानिया वाकथन के आयोजन करे जाही। ये वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होही। वाकथन के शुरुआत बिहानिया 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर ले होही। ये वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होवत लहुट के आकाशवाणी परिसर में सिराही। ये आयोजन ऑल इंडिया रेडियो के 90 बच्छर के गौरवशाली यात्रा के सुरता में करे जाते। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग डहाले पारंपरिक शिल्पकला के संरक्षण, प्रचार प्रसार और रुचि जगाए के उद्देश्य ले आने आने कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 के आयोजन करे जाते। ये आयोजन 25 मई ले 9 जून तक रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में करे जाही। शिविर में दो पाली में बिहानिया 7 बजे ले 10 बजे तक और संझा 5 बजे ले 8 बजे तक आने आने कला के प्रशिक्षण दे जाही। ज्यादा जानकारी बर प्रशिक्षु मन संस्कृति विभाग के वेबसाइट www.cgculture.in ला देख सकत हैं। खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नाम अब बदल के राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय करे जाही। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग विश्वविद्यालय के नाम बदले के प्रस्ताव ला औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दे है। दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर में एक ठीन मकान ले दंपत्ति और ओखर दू झीन लयिका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। शुरुआती जांच में पुलिस आशंका जताए है कि दंपत्ति है पहली दोनों लयिका मन के हत्या करिस एखर बाद खुदे फांसी लगा के आत्महत्या कर लेन। पुलिस है मौका ले सुसाइड नोट बरामद करे है जेमा आर्थिक तंगी और पारिवारिक झगड़ा के जिक्र हरे। पुलिस मामला की जांच करत है। और अब पेश है मौसम के हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिला मन में तापमान सामान्य ले ज्यादा दर्ज करे जाते। मौसम विभाग है रायपुर समेत बिलासपुर रायगढ़ धमतरी दुर्ग कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिला के कुछ एक जगह में लू चले के चेतावनी दे है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान ले आवत गर्म हवा के सेती अवैया तीन दिन में प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगभग 1-3 डिग्री सेल्सियस तक के बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज करेगी। और अब थोरकुन समाचार सारमा। लोक निर्माण विभाग अपन जम्मू अनुविभागीय अधिकारी मंडल के प्रमुख अभियंता तक सबोला मुख्यालय में रहे के निर्देश दे है। निर्माणाधीन कार्य मन के गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करे काम के मॉनिटरिंग और स्वीकृत कार्यालय तुरंत शुरू करे बर विभाग ये निर्देश जारी करे है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कोतिले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य अवसर परीक्षा खातिर अभ्यर्थी मन 25 मई-30 जून तक आवेदन मंगाए गए है। अव महासमुंद जिला ले लगे बानवापारा परियोजना मंडल के रवान रेंज में जंगली जानवर गौर के हमला में एक ग्रामीण के मौत हो गए है जबकि दूजन दूसर गंभीर रूप ले घायल हो गए है। बताया जाते है कि ग्रामीण जंगल के आने आने जगह तेंदु पत्ता संग्रहण करत रहें। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। प्रधानमंत्री काली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले देश के 47 टीन जगह में रोजगार मेला के तहत 51,000 ले ज्यादा अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति पत्र प्रदान करी। राज्य सरकार है खनन गतिविधि में पारदर्शिता और शिकायत मन ऊपर तुरते कार्रवाई सुनिश्चित करे बर खनन सूचना केंद्र की स्थापना करे है। और दुर्ग जिला में एक ठीन मकान ले दंपत्ति और ओका दू झीन लयिका के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिले है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 MHz पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए। संचालन अनुपमा तिवारी का है और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रवि आनंद।
5: फिल्मी गीतों के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में मैं हूँ आपकी दोस्त अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। फोन के साथ हम तैयार हैं आपके फोन कॉल्स के लिए, आपके पसंदीदा गीत आपको सुनवाने के लिए। तो तैयार हो जाइए फोन करने के लिए। कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए से बोल रहे हैं जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: जिला।
5: अच्छा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सर कैसा वहाँ का मौसम है अभी?
6: मौसम मतलब 3-4 दिन से बहुत ही गर्मी है।
5: हाँ यार,
6: ऐसा नहीं गर्मी का है।
5: जी जी जी जी जी, थोड़ा सा मौसम बदल भी रहा है। पानी बरसात हो रही है कि नहीं वहाँ पे?
6: नहीं, 4-5 दिन तो नहीं हुई है। 5-6 दिन पहले रात 2-3 दिन लगातार हुआ था पानी।
5: जी जी, आप रेडियो स्टेशन के रायगढ़ केंद्र से क्या क्या कार्यक्रम सुनते हैं?
6: कार्यक्रम तो आपके समक्ष सुनता हूँ, आपका ये कार्यक्रम सुनता हूँ, हेलो संवाद सुनता हूँ।
5: जी जी जी जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, कौन सी फिल्म का बताएंगे?
6: गाना सुनेंगे मुझे आज आप सिलसिला फिल्म का।
5: हाँ, कौन सा गीत?
6: मैं हैं।
5: जी जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और अपनी पसंद के गीत सुनते रहिए। फोन इन कार्यक्रम
6: एक बात कहूँगा कि छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो।
5: जी जी,
6: भुला के गम सारे दिल से जियो।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
6: अपने लिए सही, अपनों के लिए जियो।
5: बहुत अच्छी बात आपने कही।
6: कौन सा जियो का परिभावना है, दिल लगा के जियो।
7: बिल्कुल सही बात है, खुल के हंस के जियो, सबके लिए जियो, अपने के लिए जियो। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद सुनने के लिए।
6: धन्यवाद।
2: मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: हेलो, कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए। नमस्ते, स्वागत है आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में। और
1: हम लोग भी आपको हार्दिक से अपना आभारी है, हार्दिक से धन्यवाद दीदी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। और कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम आपको? कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: हम लोग सभी कार्यक्रम सुनते हैं दीदी, बहुत दिन के हम लोग नहीं सुन पाए आपका।
0: जी जी जी जी जी,
1: क्योंकि हम कैसे बोल सके कि ये कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता है करके, सभी कार्यक्रम अच्छा ही लगता है दीदी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: क्या है ना, इसमें एक बात है ना दीदी, जो चीज हमको नहीं जानने को मिलता है उसको जानने को और सुनने को मिलता है, तो हमें नई नई जानकारी मिलती है।
0: जी जी जी, बहुत सही बात आपने कही। और रेडियो इतना रोचक रहता है कि हम काम करते, खाना बनाते, है ना, कितने भी व्यस्त रहे सुनते रहते हैं। और बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम इसमें रहते हैं, और साथ ही आपके पसंदीदा गीत भी सुनवाए जाते हैं। तो आप पेशे से क्या करते हैं सर?
1: जी मैं तो करते थे कुछ दीदी, क्योंकि मैं दिव्यांग और ब्लाइंड दोनों हूँ।
0: जी जी
1: जी, तो आपका कार्यक्रम ही मेरा व्यवसाय है, यही मेरा टाइम पास मनोरंजन करने का व्यवसाय है दीदी।
0: अच्छा अच्छा,
1: इसलिए मैं रेडियो को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं रेडियो के दर रह नहीं सकता, 24 घंटे मेरे पास रेडियो चलती रहता है।
0: जी जी, आज के कार्यक्रम में आप कौन सी फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहते बताएंगे?
1: जी दीदी, हमें तो पूरी नंबर वन का गाना सुना दीजिएगा।
0: कौन सा गाना?
1: जेठ की दोपहरों में गर्मी लगे है रानी, गर्मी लगे है गाना, यही गाना हमको सुनवा दीजिएगा।
0: जी जी जी, गर्मी के मौसम में आप और गर्मी लगे वाला गाना सुन रहे हैं।
1: जैसे मौसम वैसे गाना सुनने में तो मजा आएगा ना दीदी, जैसे समय होता है वैसे वैसे गाना देना चाहिए।
0: ठीक है ठीक है, बिल्कुल। और गर्मी भी वहाँ बहुत पड़ रही होगी आपके यहाँ?
1: हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है। और एक बात और करना चाह रहा हूँ मैं दीदी सभी श्रोताओं से।
0: हाँ बोलिए।
1: कि पानी ज्यादा रीत समय में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि पानी अभी बहुत कीमती का चीज है दीदी। हम लोग सुन रहे हैं कई ठोकाओं में 300-400 फीट खोल रहे हैं, वो पानी नहीं मिल रहा है ना।
0: सही।
1: तो जिनके नाम है पानी प्राप्त पड़ा हुआ है, तो पानी को बेफालतू ना खर्चा करें, बल्कि उससे अच्छा उसको कहीं जगह थोड़ा सा गड्ढा खोद देवे, गड्ढा खोद के जो पानी बह रहा है उसको बचा की कोशिश करें, जो कि पशु है, चिड़िया है, कई जानवर आकर के पीती खाते हैं वो लोग। तो खाली पानी बहाए ना दें, और कहीं तरफ आना जाना है, अभी रास्ता चलना है ना।
0: बहुत बहुत अच्छा संदेश आपका, हम चाहेंगे कि सब बिल्कुल सब यही प्रयास करें, पानी की बचत करें। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपकी पसंद का ये गीत हम जरूर सुनवाएंगे। बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम दीजिए फिर सुनिए।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी, आप क्या करते हैं सर?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ दीदी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: वाह बहुत बढ़िया। और आज आज के फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सर?
1: लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम में मैं सुनना चाहूँगा फिल्म का नाम है विवाह, और गाने के बोले कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बात।
0: अच्छा, और अभी कैसा मौसम है सर उज्जैन में?
1: जी यहाँ पे काफी गर्मी है, अभी टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 45 डिग्री के करीब चल रहा है, और इतनी गर्मी है कि जैसे सुबह निकलते हैं कुछ काम होता है तो, या फिर समय शाम के नहीं निकलते हैं जैसे काम होता है तो, जैसे दिन भर गर्मी ही रहते हैं, कार्यक्रम सुनते रहते हैं और अच्छा लग रहा है।
0: जी जी, बहुत ही सौभाग्य की बात है आप महाकाल की नगरी में रह रहे हैं। और चलिए आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच
0: जी।

0: कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
1: मैं बड़ा गाँव जिला गोना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकर बोल रहा हूँ मैम।
0: जी जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, और फोन इन कार्यक्रम लीजिए, फिर सुनिए। मैं आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज मुझे इना कलम का खुनवा देना मैम, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए।
0: हाँ, आपको ये गीत बहुत पसंद है लगता है?
1: जी जी मैम
0: जी। हाँ, और कैसा मौसम है आपका वहाँ
1: मध्य प्रदेश में? मौसम ऐसा ही है, गर्मी पड़ रही।
0: जी जी जी, हाँ हाँ, थोड़ा सा मौसम बदल भी रहा है कि नहीं? हाँ, जैसे थोड़ा कभी बीच बीच में बारिश हो जा रही है, लेकिन हाँ उमस बहुत है रायगढ़ में भी।
1: जी जी मैम, हमारे गुना जिले में भी गर्मी का महसूस हुआ है। कार्यक्रम सुनते रहते हैं रेडियो पे।
0: जी, बाहर निकलते हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान देते हैं गर्मी के समय, कुछ ऐसा सावधानी लेते हैं बाहर निकलते समय?
1: जी मैम, और आपके कार्यक्रम में सुनता हूँ आकाशवाणी सभी केंद्र से खुद से जुड़ा हुआ है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, रेडियो एक बहुत ही अच्छा माध्यम रहता है ज्ञान वर्धक, और हर प्रकार के कार्यक्रम, हर उम्र के लोगों के कार्यक्रम आते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं और सभी कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। मित्रन के नाम बोलना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए।
1: प्रियम सिंह ससौरिया है, नरेश प्रजापति जी है।
0: जी जी हाँ, वो भी सुनते रहते होंगे हमारा कार्यक्रम, तो बिल्कुल आपकी पसंद का गीत हम जरूर सुनवाएंगे। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए का पहला भाग। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुन सकेंगे, ये अंतिम भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 6:45 होने को हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित होगा।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: घर सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
10: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
11: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
10: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
8: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा और दुर्ग के आर्यनगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 23 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रोजगार मेले में 257 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलावा डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इस ऐप का शुभारंभ किया। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम करही बाजार पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नल जल योजना के तहत निर्माणाधीन सोखता में श्रमदान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना के हितग्राही परिवार से मुलाकात की। वहीं आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने धात्री माताओं को किट भी प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूलों के उन्नयन, सीसी रोड और मांगलिक भवन बनाने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ सुव्यवस्थित रूप से जन जन तक पहुंचाना है।
1: आज सुशासन तिहार के अंतर्गत करही बाजार में समाधान शिविर में आए हैं। 45 डिग्री गर्मी के बाद भी पूरे क्षेत्र से भारी संख्या में समाधान शिविर में आए हैं। सबने अपना अपना अनुभव बताया है कि कोई ट्राईसाइकिल की मांग की तो उनको तत्काल मिला है, किसी का राशन कार्ड तत्काल मिला है। तो इस सुशासन तिहार का मतलब ही है कि जो हम लोग जन सेवा करना चाहते हैं वो लोगों तक ठीक से पहुंचे और पहुंच रहा है कि नहीं, ये फील्ड में गांव में जाने से ही, लोगों के बीच में जाने से ही पता चलता है और मैं बड़ा मुख्यमंत्री के नाते संतुष्ट हूँ।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल सुशासन तिहार के दौरान चिरमिरी में अधिकारियों की बैठक में पेयजल समस्या और स्कूल परीक्षा परिणामों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कोरिया जिले में खाद वितरण में गड़बड़ी सामने आने पर सहायक आयुक्त और सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। इस बीच कोरिया जिले की जिला समिति खड़गवां में खाद वितरण से जुड़े गबन प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी शाखा प्रबंधक और नोडल अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के आकांक्षी ब्लॉकों में चैंपियंस ऑफ द क्वार्टर रिपोर्ट में बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक ने सेंट्रल जोन में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। आयोग ने स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़े कई संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया था, जिसमें उसूर ब्लॉक का प्रदर्शन उत्कृष्ट पाया गया। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों डायल 112 फेस टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इस सेवा का शुभारंभ करते हुए 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले समय में डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा।
12: 112 जो कोई कॉल करेगा उसको अपने लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होगी, उसका लोकेशन ऑटोमेटिक आएगा, उसके नियरेस्ट 112 की जो हमारी गाड़ी खड़ी होगी वो जाकर असिस्टेंस देगा। इसमें एक जवान भी एक पुलिस का इसमें तैनात होगा। 112 की इस व्यवस्था से जनता तक, पहले 16 जिलों में था, ये 33 जिलों में अब आने वाला है। आने वाले समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रोन सिस्टम से भी जुड़े। आज गाड़ी सड़कों पर चलकर पहुंचती है, उससे पहले हमारा ड्रोन पहुंच जाए 112 कॉल करने पर। इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं।
0: राज्य सरकार ने खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए खनन सूचना केंद्र की स्थापना की है। इस पहल के तहत टोल फ्री नंबर 1800-233-2140 जारी किया गया है। इस नंबर पर आम नागरिक अवैध खनन, अवैध परिवहन और खनिज संबंधी अनियमितताओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सूचना केंद्र का संचालन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समाप्ति के बाद स्थानीय लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा की गई अभिनव पहल पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 23 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा प्रदेश के सभी डाकघरों में आगामी 25 और 26 मई को अल्प बचत खाता खोलने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान कोई भी नागरिक अपने नजदीकी डाकघर जाकर या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंटों के माध्यम से अल्प बचत योजनाओं जैसे मासिक आय योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा पारंपरिक शिल्प कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार और रुचि जागृत करने के उद्देश्य से विविध कला प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 25 मई से 9 जून तक रायपुर स्थित महंत घासीदास संग्रहालय परिसर में किया जाएगा। शिविर में दो पाली में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक विविध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा कल सुबह वाकथन का आयोजन किया जाएगा। इस वाकथन में आकाशवाणी के अधिकारी कर्मचारी, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल होंगे। वाकथन की शुरुआत सुबह 6 बजे आकाशवाणी भवन अंबिकापुर से होगी। यह वाकथन चंद्रशेखर आजाद चौक, घड़ी चौक, पुराना बस स्टैंड और गांधी चौक होते हुए वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न होगा। यह आयोजन ऑल इंडिया रेडियो की 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की स्मृति में किया जा रहा है। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम अब बदलकर राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय किया जाएगा। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्य नगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने आशंका जताई है कि दंपत्ति ने पहले दोनों बच्चों की हत्या की, उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है जिसमें आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवाद का जिक्र है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने रायपुर सहित बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम के अलावा प्रदेश के 14 जिलों के कुछ स्थानों में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण अगले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रायपुर के माना में दर्ज किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नया रायपुर स्थित नंदन वन जू और जंगल सफारी में अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों और नई बोटिंग सेवाओं का शुभारंभ किया। राजधानी रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर और हिस्ट्री शीटर रवि साहू की 7,66,00,000 रुपये कीमत की 16 संपत्ति को सीज कर दिया है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में

0: माध्यम से देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के करही बाजार गांव में लगाई चौपाल, कई घोषणाएं की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में आपातकालीन सेवा डायल 112 को ड्रोन सुविधा से भी जोड़ा जाएगा और दुर्ग के आर्य नगर में एक मकान से पति पत्नी और उनके दो बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर।

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम। लीजिए फिर सुनिए का ये दूसरा भाग। संचालन अनुपमा तिवारी का है और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रवि आनंद।
1: कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में स्वागत है आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं
2: जी? बहना जी प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: जी मैं राजू यादव, ग्राम उत्तरा श्रीराम पटेरा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: अच्छा, और कैसा हाल चाल है यादव जी?
2: बहना जी बहुत दिनों बाद कॉल कार्यक्रम में शामिल हो रही।
1: ऐसा क्या?
2: ऐसा ऐसा है बहना जी की थोड़ा कृषि का कार है और शादी विवाह में थोड़ा व्यस्तताएं हैं।
1: जी जी जी।
2: तो इसलिए समय नहीं मिल पाता, जब समय मिलता है तो मैं जरूर कार्यक्रम में भाग लेता हूँ।
1: बुंदेलखंड बहुत ही प्यारी बोली है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। है ना, आपके यहाँ आप जहाँ रहते हैं खास तौर से क्या उगाया जाता है खेती किसानी में?
2: तो हमारे बुंदेलखंड में और हमारे गांव शहर में सबसे ज्यादा मूंगफली की खेती होती
1: है। बहुत बढ़िया। तो फिर जैसे बोलते हैं हम फसल चक्र करना चाहिए, तो आप बदल बदल के कुछ करते हैं, मतलब मूंगफली के
2: बाद बदल चक्र अपनाते हैं। 3 साल बाद कृषि को बल देते हैं, खेत को बल देते हैं कि अब क्या खेत में बोना।
1: जी जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद की गीत बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
2: चलिए मूवी का सुनाइए, मन चली का।
1: ठीक है ठीक है, बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे आपकी पसंद का गीत सुनवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और इसी तरह हमारे
2: बहना जी बुंदेलखंड की धरती से दो लाइन कहूँगा।
1: जी बिल्कुल।
2: भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसे आकाशवाणी रायगढ़ से।
1: बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात कही और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही स्नेह बनाए रखिए, हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए। और अब हम सुनवाएंगे आपके पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए
2: जी। बहना जी प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार।

तक हम आह भरेंगे, आ जा तो बात करेंगे, चुपके मुलाकात करेंगे, ये सच है।

0: कार्यक्रम फिर लीजिए, फिर सुनिए, मैं आपका स्वागत है।
1: जी मैडम जी, मैं करम सिंह राठी बोल रहा हूँ, ग्राम बोधिया से।
0: कहाँ से बोल रहे हैं राठिया जी?
1: ग्राम बोधिया से मैडम जी, ये छाल भी पड़ते है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: काफी दिनों बाद कॉल लगा है मैडम, आज कल कैसे नहीं लगता है, मैं काफी दिनों से सुनता हूँ सुनने के लिए। तो
0: जी जी जी जी
1: जी, आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
0: मैं अनुपमा बोल रही हूँ
1: जी, आपसे पहली बार बात हो रहा है।
0: हाँ हाँ हाँ, लीजिए फिर सुनिए, मेरा पहला कार्यक्रम है, बाकी कार्यक्रम होता रहता, मैं उद्घोषक हूँ। बहुत स्वागत है आपका जी।
1: गाना सुनो मैडम।
0: हाँ बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत बताइए, फिल्म का नाम बताइए। हमारा ही प्यार से कौन सा गीत?
1: घूंघट के प्यार से दिलबर को वाला तो गाना
0: नहीं। जी जी जी जी जी जी जी, और क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है मैडम जी, अब प्लांट में काम करता हूँ, आज तो छुट्टी था तो आज नहीं गया हूँ, बाहर घूमने गया हूँ आज, धर्म जगत तक।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, और वहाँ कैसा मौसम है अभी यहाँ रायगढ़ में?
1: बहुत बाद में फोन लगा मैडम जी।
0: जी यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, धर्मजगढ़ में कैसा है थोड़ा?
1: हाँ इधर भी तो बहुत गर्मी है मैडम।
0: हाँ,
1: और मेरा फोन ही नहीं लग रहा था, कि पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब फोन लगता था लेकिन रिसीव नहीं हो पाया था, आज लगा हुआ है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका फोन लग गया।
1: मैं 60 साल का था उस समय से सुन रहा हूँ, ज्यादातर आपके पसंद है जो लीजिए फिर सुनिए, और हालत सुनता हूँ।
0: और अभी आपकी क्या उम्र है राठिया जी? अभी आपकी क्या उम्र है? आप 7 साल से सुन रहे हैं, अभी आपकी क्या उम्र है?
1: अभी मेरा 32 साल हो रहा है।
0: चलिए बहुत बढ़िया, इतने साल से आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, ऐसा ही स्नेह बनाते रहिए। और
1: मेरा पिताजी थे तो सुनते थे, तब से मेरा दिल लगी हो गया मैडम।
0: जी जी जी जी जी,
1: 200 ट्रांजेक्शन रखा है तो बैटरी वाला है,
0: थोड़ा
1: सुन रहता है, आजकल तो मोबाइल से सुनते हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, आपके पसंद का गीत हम जरूर सुनवाएंगे। नमस्कार।

0: आकाशवाणी F90।
1: मैं रिनिका रॉय श्रीकुंज कॉलोनी बोई दादर की निवासी हूँ। मैं रेडियो फोन के माध्यम से सुनती हूँ। 90 वर्षों का यह गौरवशाली सफर सिर्फ समय की गिनती नहीं

0: यह विश्वास, संस्कृति और संवेदना की धड़कन है। जब जब देश ने नई सुबह देखी, तब तब तुम्हारी आवाज ने उसे शब्द दिए। कभी समाचार बनकर सत्य की राह दिखाई, कभी संगीत बनकर मन को सुकून पहुंचाया, तो कभी किसानों, विद्यार्थियों और जन जन के साथी बनकर ज्ञान की ज्योति जगाई। रेडियो की वह मधुर धुन जो घर घर में अपना पन खोल देती है, आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहली बार सुनाई दी थी। 90 वर्षों की यह यात्रा परंपरा और प्रगति का अद्भुत संगम है। अपने पीढ़ियों को जोड़ा, देश की विविधता को एकता में पिरोया और हर दिल में भरोसे की आवाज बनकर बसे। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम सब की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी आवाज यूं ही सदियों तक गूंजती रहे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।
1: कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में आपका स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: लीजिए फिर सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम मैं सागरा सोमनी राजनामा छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू बोल रहा हूँ।
1: अच्छा साहू जी, और क्या हाल चाल साहू जी?
2: सब ठीक है मेरा। मैं मैच जीतने जाता हूँ तो रात लगाया जाए, अभी ऐसे करके लगाया हूँ, याद आया तब।
1: जी जी जी।
2: आप कौन बोल रहे हैं मैडम?
1: मैं अनुपमा बोल रही हूँ।
2: अच्छा अनुपमा, आपसे पहली बार बात हो रही है?
1: हाँ हाँ हाँ।
2: और आपके केंद्र का मैं श्रोता हूँ।
1: जी
2: जी,
1: बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
2: मैं तो भरपूर रेडियो का दीवाना हूँ, हर कार्यक्रम सुनता हूँ, हर आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। फरमाइशी हर कार्यक्रम फोन लगा के आनंद लेता हूँ गाने का। 1983 से सुन रहा हूँ मैडम।
1: अच्छा,
2: तो हम राज के सुना गया नील गगन के पहले वाले मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: श्रोता जनों का नाम ले लूंगा मैडम?
1: हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप, और किसी का नाम लेना चाहते हैं?
2: सुनीता में प्राविज नगर दुर्ग का है
1: जी,
2: और परसुरे बालों से जितेंद्र मानीपुरी है, और वन वगैरह से योगेश सारवा जी है, और विश्वकर्मा जी है, बसंत विश्वकर्मा लमाइन भाठा मुसरा के, बिलाईगढ़ से रोशन लाल दिवांगन है, दुर्गाराम साहू जी है, उनके पसंद सुना दीजिए मेरा।
1: बिल्कुल बिल्कुल साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए, मैं अपने पसंद के गीत सुनते रहिए। धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: गीतों के फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए में आज मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त अनुपमा। बहुत ही आनंद रहा आपके साथ मिलकर कार्यक्रम करने में। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा, आप अपनी पसंद की गीत सुनिएगा, हमें फोन करिएगा इस नंबर पर 07762223233 2233 और आज के कार्यक्रम में हमें विशेष रूप से तकनीकी सहयोग दिया BS ध्रुवे ने, प्रस्तुति सहयोग रहा रामविलास पटेल का, प्रस्तुत करता रहे रवि आनंद। अब दीजिए अपने मित्र अनुपमा को अनुमति। नमस्कार दोस्तों,
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम लीजिए फिर सुनिए अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहनी लईका सियान जवान किसान मितान सबो झनला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। और देखा संगवारी हो आज के चौपाल के बैठकी में मैं पहुंच गए हाँ कहा। और आप मन तो देखते छवा कि गर्मी कैसे लागत है और तापमान है दिन के दिन कैसे बढ़त जात है और एकर ले जो पसीना है वह चुहचावत है कहा। और देखा संगवारी हो जो तापमान है वह 44-45 अंश सेंटीग्रेड तक भागत है कहा। तो ऐसने में हमला अपन के स्वास्थ्य के अपन के शरीर के देख रेख करना पड़ी और संगे संग अपन के घर परिवार के भी हमला ध्यान रखना पड़ी कहा। और हमन जोन भी पशुपालन करे हन उमन के भी हमला विशेष ध्यान रखना पड़ी कहा। देखा हमन तो कूलर एसी में हमन आराम से रह जाथन लेकिन हमन जोन भी पशुपालन करे हन उमन के बर भी हमला वैसे ही सोचना है जैसे हमार बर खुद बर सोचथन। तो वैसे उमन पर खास विशेष ध्यान रखना है उमन के भी ठंडकता के ध्यान रखना है उमन के जो खान पान है पानी पिए के जो पानी है ओकर विशेष ध्यान रखना है। उमन ला साफ सुथरा और ठंडा पानी दिन में 4 बार 5 बार 6 बार हो सके तो हमला पिलाना है कहा। और अच्छा से उमन के देख रेख करना है और जैसे हमार रहे के कोठा है पशु मन के तो उमें खिड़की हवे तो खिड़की के दरवाज़ा माला खोल देना है कह और हो सके तो उमन बर भी पंखा वगैरह के व्यवस्था हमला करना है और मन के अच्छा से देख रेख करना है। और अभी छुट्टी चला थे कह हमार लोग लड़का मन के तो उमन के भी हमला ध्यान रखना है उमन भी खेले कूदे बर रहती होती भाग जाते हैं तो एक हमला विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो होगी संगवारी हो ये मौसम के हालचाल कहा। और हमर विषय को तियाबो कहा तो आज के बाद के विषय हवे संगवारी हो सतत आय का साधन साग सब्जी उत्पादन। देखा संगी हो साग सब्जी के जो उत्पादन है यानी कि सब्जी के खेती है एला कतकोन किसान भाई बहनी मन बर एहर सतत आय और लगातार आमदनी के एक बहुत बड़े साधन हवे।

कहा, धान के फसल तो साल में एक या दो बार आते, लेकिन सब्जी मन ला लगा के आप मन साल भर हर हफ्ता पैसा कमा सकत हा। और देखा भैया हो, साग सब्जी के खेती ला सतत आय के साधन हमन कैसे बना सकत हन, और एकर बर का बात के ध्यान रखना चाहिए। तो एकर बर सबले पहली साल भर आय बर हमला फसल चक्र, जो फसल चक्र है ओला अपनाना पड़ी। सतत आय बर सबले जरूरी है कि खेत कभू खाली झन रहे। खेत में हमन कभू मतलब कछु न कछु फसल हमला लगाते ही रहना है। एक फसल कटिस त दूसर फसल के तैयार हमला करना चाहिए, दूसर फसल बर तैयार रहना चाहिए। जैसे तरोई है, लौकी कद्दू वर्गीय जो फसल है, करेला है, कुंदरू है, बरबट्टी है, ए मल्ला आप मन गर्मी और बरसात दोनों मौसम में ले सकत हो। कुंदरू और परवल तो एक बार लगा दिया तो कतको साल तक यह फल देते रही थे कहा। एक जड़ हर आसानी से ख़त्म नहीं हुए, तो एकरे सेती हमला एला लगाना है और हमला एकर जो उपज है ओला पात रहना है। ऐसने ही संगवारी हो, भाटा मिर्चा और टमाटर है, ये तीनों हर ऐसन फसल है जेकर मांग बाजार में 12 महीना रही थे कहा। एकर एक बार पौधा एहर बड़े होइस त 6 से 8 महीना तक लगातार तुड़ाई मिलत रही थे। जो भी हमन भाटा मिर्चा अपन जाना था और टमाटर लगा थन, तो एक बार लगा थन तो एहर 6 या 8 महीना तक एकर जो फल है ओला हमन तोड़ सकत हन और बाजार में बिक्री कर सकत हन। एकर से हमला लगातार आमदनी मिलत रही थे कहा। ऐसने ही मुनगा है, जेला आप मन सहजन भी कह सकत हा। घर के मेड़ में या खेत के कोना में मुनगा लगा देना चाहिए। एकर खेती में खर्चा कम है और बाजार में एकर दाम घलो बढ़िया मिलते कहा। नगद और जल्दी आय देने वाला भाजी मन है, मतलब भाजी लगाथन तो एकर से हमन जो बिक्री करथन तो नगद पैसा मिलते और यह जल्दी भी हो जाते, तो हमला भाजी भी लगाना है कहा। अगर आप मनला हर हफ्ता या फिर हर दूसर तीसर दिन में नगद पैसा चाहिए तो भाजी और कम दिन के फसल सबले बढ़िया एहर साधन हवे कहा। तो हमला भाजी जरूर लगाना है, एकर से हमर जो स्वास्थ्य है वह भी अच्छा रहते और यह जल्दी आय देने वाला सब्जी हवे कहा। और देखा भाजी मन में आप मन चेज भाजी है, कांदा भाजी है, लाल भाजी है, पालक भाजी है, मेथी भाजी है, ये सब्बो भाजी मन ला लगा सकत है और सतत आमदनी कमा सकत है। ये मन 25 से 30 दिन में बेचे बर तैयार हो जाते कहा। ऐसने ही धनिया और पुदीना है कहा। गर्मी और बरसात के दिन में धनिया पत्ती के भाव हर आसमान छूते। आप मन देखा था कि अभी एकर जो भाव है बहुत ज़्यादा हवे, कम जगह में घलो एकर ले हमला अच्छा कमाई मिल सकत है कहा। ओकरे से ती हमला धनिया और पुदीना के खेती करना है और सतत आमदनी कमाना है। और देखा संगवारी हो, साग सब्जी के उत्पादन बर हमला मचान विधि के भी प्रयोग करना है। सब्जी उत्पादन ला हमला सतत रूप से करना है। एकर जैसे हमन लौकी करेला बरबट्टी और तोरई है एला लगाथन तो एहर का होते भुइया में फैल जाते कहा। तो एकर से भुइया में फैले के बजाय हमन मचान बनाबो तो ओहर मचान में चढ़ी कहा, तो एकर ले सब्जी मन में कीड़ा कम लगते और फल है सीधा और सुंदर दिखते, जेकर से बाजार में दाम भी अच्छा मिलते और तुड़ाई करे में भी आसानी होते कहा। ऐसने ही हमन साग सब्जी के खेती करत हन तो ओमे जैविक खाद और दवाई ओकर विशेष ध्यान रखना है, यानी कि जैविक खाद डालबो तो कम खर्चा हो ही और ज़्यादा मुनाफा मिल ही कहा। लगातार आय बार खर्चा ला हमला कम करना भी जरूरी हवे। एकर बार वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ खाद और गोबर खाद है एकर भी हमला भरपूर प्रयोग करना है, एकर से माटी के सेहत भी बने रही थे कहा। और कीड़ा मन ला भगाए बर नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और
गौमूत्र नीम पत्ता ले बने जो गरुड़ अस्त्र है एकर भी हमला छिड़काव करना है। एकर से दवाई के खर्चा भी बाँचते कहा। और संगे संग संगवारी हो जैसे हमन सतत आय व साग सब्जी के खेती करत हन तो हमला बाजार के भी समझ होना जरूरी हवे कहा। तो आप मन भी बाजार के समझ ला अच्छा से पुष्टि करा और अच्छा से ये साग सब्जी के उत्पादन करा और सतत आमदनी ला कमावा संगवारी हो। और देखा बेरा हो गिस ना कृषक प्रश्न मंच के कोती जाए के। तो संगवारी हो आज के प्रश्न हवे पपीता के एक ठन बढ़िया किस्म के नाम बताहा। तो संगवारी हो आप मन हमार कार्यक्रम में आखिरी तक अंत तक बने रहा तो एकर उत्तर आप मन ला जरूर मिलही। हमन एकर चर्चा आगे चर्चा में करबो कहा तो एकर उत्तर आप मन ला जरूर मिल जाही। तो आप मन हमार कार्यक्रम ला सुनत रहा। और संगवारी हो आज हवे दिन शुक्रवार और शुक्रवार के दिन हमार विशेष क्रम रही थे हमार लोकगीत के क्रम। तो चला लोकगीत के क्रम को ती जाबो। संगवारी हो भाजी पाला और धनिया पताल के चटनी कतका सुघर लागथे आप मन तो जानते छवा। आहा एकर स्वाद झन पूछो। ऐसे ही संगवारी हो हमर लोक गीत आप मन के मन पसंद शुरू हो गए कहा। और आप मन के ये मन पसंद कार्यक्रम हमर लोक गीत के क्रम ला लेके आए हवा में आप मन के संगवारी सुमित्रा पटेल। आप सब बोझन ला कहत हवा राम राम जय जोहार। और संगवारी हो भाजी भाटा पताल के बात निकली से तो एकर से ही संबंधित गीत हवे भाजी ले ले भाटा ले ले धनिया पताल। ये सुघर गीत मा स्वर दे हवे सफरी मरकाम ओमन के साथी मन। और ये गीत ला पसंद करैया हम संगवारी मन हमें ग्राम धुरा बांधा भाटा पराले प्रमोद साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार साहू युवराज साहू पलारी छत्तीसगढ़ ले नीतीश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पूना राम कृष्णा देवांगन नयागंज वार्ड भाटा परा छत्तीसगढ़ ले हवे विष्णु साहू पूरब साहू वीरा साहू हर्ष साहू कुमकुम साहू योगेश्वरी साहू। यही गीत के पसंद करता संगवारी हमें लोरमी मेघा पराले राम कुशल पटेल मोहर पटेल मानू पटेल शोभा पटेल पूना राम पटेल बिसाहू पटेल राधे श्याम पटेल भरत पटेल छत्तीसगढ़ सहसपुर ले हमें छोटकू साहू मोहित राम साहू लोकेश साहू राम किशन साहू दुली चंद साहू सतीबाई साहू उर्वशी छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा ले हमें चंदूलाल सिंगरौल नारायणी सिंगरौल नमेश सिंगरौल नेहा और वानिया सिंगरौल चांदी चौक गंडई पंडरिया ले हमें पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविन्द्र और रौनक सेन। तो आवा संगवारी हो आप सबों के पसंद के ये सुघर लोकगीत ला सुनबो।

संगवारी हो, हमर लोकगीत के क्रम में आप मन सुंदर सुंदर लोकगीत ला सुनिया। और अगला लोकगीत के क्रम हवे पढ़े के बाद जोड़ीदार बड़ा मजा थे, ये गीत ला गाए हमें बिंदु देवांगन। और ये गीत के पसंद करता संगवारी मन हमें बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य ले काफिर भाई रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और पूरा उनके माखीजा कुटुम्ब परिवार। देवरी भाटा पराले हमें मुकेश कुमार रजक, युवान रजक, काव्या रजक, तन्नू रजक, तानिया रजक, नित्या रजक, चेंद्रीबन नवागांव ले नवागांव बालोद ले हमें चंद्रभान हिरवानी, कुमारी हिरवानी, फुलेंद्र हिरवानी और नेमेंद्र हिरवानी। मन की लोरमी ले हमें नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे, समीर खांडे, रेखा देवाकर। ग्राम भदरसी ले हमें घना राम सेन, गीतेश सेन, दीपेश सेन, निर्मला सेन। भाटापारा छत्तीसगढ़ ले हमें हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। साले भाटा महासमुंद ले हमें जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण ध्रुव, दिव्यांशी ध्रुव, खेमू। धरनी किरवई ले हमें समेलाल धीवर, मुन्नी धीवर, ममता धीवर, कुड़ाल धीवर, युवांश धीवर, गोविंद धीवर। आमा खोड़ा रेंगा खास जिला कबीर धाम ले हमें देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्ष प्रिया, गीत सरगम नेताम, महामाया नेताम। तो आवा संगवारी हो, आप सबो के पसंद के ये सुघर लोकगीत पढ़े के बाद वास्तव में बड़ा मजा आते संगवारी हो, तो ये गीत ला सुनबो।

हाँ तो संगवारी हो, लोकगीत के क्रम जारी है कहा, और ये क्रम मा गीत के पसंद करैया संगवारी हवे हटौत बाजार लाहौद ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल, अड़ार नान घाट ले माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेथा बाजार ले हवे जितेंद्र दास, मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी, रानी गांव नगरी जिला धमतनी ले खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू, पोटिया कला दुर्गले हमें संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, वार्ड नंबर दो गंडई पंडरिया ले हमें शिवा यादव, राज यादव, चिंटू, तरुण यादव, चोराम यादव, कन्हैया निर्मला, कर्मा चौक लोहारी डी कवर्धा छत्तीसगढ़ ले हमें अशोक कुमार साहू, लेलेश्वरी साहू, खुशान साहू, निशान साहू, ग्राम फुलझर घटारानी जिला गरियाबंद ले हमें योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी साहू, यामिनी साहू, मुस्कान साहू, हर्षिता साहू, और ये सबो संगवारी मन पसंद करे हमें गीत ला तोर चंदा कस चेहरा आँखी म झूले, और यही गीत ला पसंद करी है हमार संगवारी मन जोन मन चिट्ठी के माध्यम से अपन के फरमाइश लिख के भेजी है। एमन हमें ग्राम बंगला मटिया बालोद ले सी कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, दतरंगी ले विश्राम यदु, पार्वती यदु।

प्रतिमा, रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, लालपुर ले लुकेश यदु, समीर यदु, देवरी भाटा पराले गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले हमें राम दुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति, शशि कांता प्रजापति, धरसीमा ले हमें छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले हमें छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, जेएल रोड रायगढ़ ले हमें भाई नरेंद्र कुमार तिवारी, हटरी चौक विलाईगढ़ ले हमें खीकराम देवांगन, रेणु देवांगन, रजनी देवांगन, पिंकी देवांगन। तो आप सबो के पसंद के ये गीत लावा संगवारी हो, सुनबो और सुनाबो।

संगवारी हो लोकगीत के अगला क्रम में अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जय मंत्री के वर्ड कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव दतरंगी ले भागवत वर्मा शांति देवी लीला वती विनीता वर्मा रुद्र वर्मा यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र ले संतोष खड़से और विनोद खड़से भीम खोज तरपुंगी ले हमें संतोष गुप्ता हिमेश हितेश लक्ष्मी और प्रतिभा गुप्ता नानघाट कातल बोर्ड ले हमें भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री राजपूत अटल रेडियो श्रोता संघ वार्ड 20 साकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले हमें नारायण लाल साहू कुलवंती देवी साहू दिव्येंद्र प्रताप साहू नेहा देवी साहू मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार साहू रुद्रांश प्रताप साहू वार्ड 34 कन्हारपुरी संगम चौक राजनांदगांव छत्तीसगढ़ ले हमें मंथिर दास साहू कुमारी भेविका साहू संतोष कुमार साहू कुमारी देवी साहू चमन लाल साहू दीपाली देवी साहू गुणांश देव साहू कली भदर ले हवे पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर श्रीमती शारदा निर्मलकर गीतिका नोनी कुमारी लोचन विद्यार्थी कन्यावाड़ा ले हवे देवेंद्र कुमार सुनवानी लक्ष्मी कोरासी भैसा रायपुर छत्तीसगढ़ ले हवे पवन कुमार साह क्रांति देवी साहू पंकज साहू सुष्मिता साहू दीपिका साहू जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ ले हमें सुरित रमेश साहू तारा विद्या साहू जितेंद्र किशन साहू हिरेंद्र नीलकंठ साहू सुनीता ऋषिवन साहू चंद्रहास संजीव त्रिलोक साहू रणजीत सिंह साहू राजा जी और भी यही गीत के पसंद करैया और भी संगवारी हमें जोन मन चिट्ठी भेजे हमें इमन हमें ग्राम पहारा अहिवारा जिला दुर्ग ले हमें पोषण बंछोर चंद्र किरण प्रीति छाया बंछोर रोहासी ले डगेसर राम साहू घनश्याम साहू गौरव साहू नूतन साहू अलका जानवी साहू बेमेतरा ले हमें सुरेश सारथी पूर्णिमा सारथी मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई ले हमें नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा खट्टी महासमुंद ले हमें सुभाष शर्मा छाया शर्मा मोती तिवारी हेमलता तिवारी अर्जुन तिवारी भारती तिवारी गरिमा तिवारी करण तिवारी और ये सबो संगवारी मन के पसंद के गीत हवे तीपे चाहे भूमरा तो आवा संगवारी हो आप सबो के पसंद के ये गीत ला सुन लेबो।

तो संगवारी हो, कार्यक्रम में आखिरी गीत सुनबो लक्ष्मण मस्तुरिया के स्वर में बकरी के तुमानार। और ये गीत ला पसंद करैया संगवारी मन हमें मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले हमें रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन। मिथुमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ ले हमें गेमलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, बिहारी पटेल, लक्ष्मी बरेट, लक्ष्मण वाधवानी, कृष्ण कुमार यादव और बिंदु भाई। डोंगरगांव राजनांदगांव ले हमें राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिस्का, तन्मय गजभिये। और यही गीत ला पसंद करैया संगवारी और हमें जोन मन चिट्ठी के माध्यम से अपन के फरमाइश लिख भेजे हमें भाई रामचंद्र जी देवांगन, घासी मामा सलाम, गीता युवराज सिंह, कुमारी सुनैना, पिंकी यश, शीतल मामा, प्रियांश, तन्वी, नीता, चंद्रवती, भागवत देवांगन, पदुम देवांगन, समस्त देवांगन कुटुंब परिवार एमन हमें कोष्टापारा जुड़वा चौक शरण पाल ले। ग्राम दर चूरा ले हमें ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू। श्री श्रृंगेरी सी महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गाँव ले हमें मिथिले देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु देवांगन और अंकित देवांगन। रुआ बांधा सनिश्चरी बाजार भिलाई ले हमें सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, सौर्य जैन और शुभम जैन। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी ले हमें द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ ले हमें लक्ष्मण बाधवानी, श्रीमती विमला बाधवानी, मास्टर हर्ष खुशी और शुभम बाधवानी। यही ले हमें कन्हैया लाल तीर्थानी। गौशाला पारा रायगढ़ ले हमें विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यशु और अंशु गुप्ता। तो आवा संगवारी हो, आप सबो के पसंद के ये शुभ लोक गीत ला सुनबो।

0: तो संगवारी हो अभी हमन सुनत रहे सुघर सुघर लोकगीत ला। संगी हो लोकगीत के क्रम ह यही सिरावत है, तो लोकगीत के क्रम ले मोला देवा विदा। राम राम, जय जोहार।
1: किसान भाई मन, का आप मन रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम करना चाहता? तो आज ही अपनावा हरी खाद, ढेचा, सनई, लोबिया जैसे फसल ला उगावा और फूल आए के पहली खेत मा जोत देवा। यह माटी ला भरपूर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ देते, जेकर ले बंजर जमीन मा उपजाऊपन बढ़ते, कम लागत बेहतर पैदावार। अधिक जानकारी पर अपन लखठा के कृषि केंद्र ले संपर्क कराओ।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: आरबीआई कहता है
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हवा आप मन के संगवारी सुमित्रा पटेल। और देखा संगवारी हो, भेंटवार्ता के क्रम रहते हमारे कार्यक्रम में, तो यही भेंटवार्ता के अंश में मैं भेंट करत हूँ एक ऐसे किसान संगवारी ले जोन मन पशुपालन के काम ला बहुत ही बेहतर तरीका ले करत है और बहुत ही अच्छा आमदनी कमात है। तो भैया आप मन ला मोर कोती ले राम राम, जय जोहार।
1: राम राम, जय जोहार।
0: हाँ तो आप मन के परिचय बताहा।
1: मोर नाम है सूरज कुमार चौधरी।
0: हाँ हाँ।
1: ग्राम अमेरी पोस्ट देगा।
0: अच्छा।
1: जिला सारंगढ़ बिलाईगा।
0: हाँ तो आप मन अमेरी किया है ना।
1: हाँ।
0: तो आप मन पशुपालन के काम करा था, तो आप मन के ठी अभी गाय रखे है?
1: चार ठी रखे है ना अभी।
0: अच्छा, चार ठी रखे है। यार का नसल के?
1: दो ठर एचएफ और दो ठर जर्सी।
0: अच्छा, एचएफ और जर्सी। तो ये जो एचएफ और जर्सी है एला रखे के का कारण है?
1: एचएफ मन थोड़े से दूध ज्यादा देते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और जर्सी में भी देते हैं, बाकी तो कल थोड़े से कम देते हैं।
0: अच्छा हाँ। लेकिन ये सुने बा मिलते कि ए मन के बहुत ज्यादा देख रेख करे वाला लागते।
1: हाँ लागते, बीच बात में कुछ भी डॉक्टर वॉक्टर सलाह
0: मतलब ए मन ला रोज नहाए बर।
1: हाँ नहाते रहते हैं, एचएफ मन थोड़े ज्यादा नहाना पड़ते।
0: हाँ ज्यादा नहाना पड़ते।
1: हाँ, गर्मी में अभी थोड़े से दो बार तीन बार वही करते हैं।
0: हाँ तो आप मन के पास पानी की क्या सुविधा है?
1: ट्यूबवेल है हमारे ठीक।
0: अच्छा हाँ, तो ट्यूबवेल है तो आप मन बहुत ही अच्छा से मतलब साफ सुथरा पानी पिला था है ना।
1: हाँ।
0: अभी गर्मी में कम से कम चार बार पानी पिलाना है कहा?
1: चार बार पानी पिलाना है, धोना भी दो बार तीन बार धोता
0: हूँ। हाँ बहुत मतलब अच्छा से साफ सुथरा रखे है, हमन देखत है आप मन के कोठाला। और ये बताया जैसे चार ठी राखे हन कहा था, तो एमन के आप मन खान पान के व्यवस्था कैसे करता, का खिला था पिला था?
1: घरेलू जो हमारे वही है, पैरा के चारा और पैरा के भूसा बना है कुटी।
0: हाँ हाँ, पैरा कुटी।
1: हाँ
0: हाँ और भूसा।
1: हाँ और कोढ़ा बोलते हैं हमन।
0: हाँ हाँ, कोढ़ा ला चूरो के।
1: हाँ चूरो के।
0: और घास वास?
1: अभी बार गर्मी में नहीं, घास वास बरसात में हम लोग घास वास मिल जाते हरा चारा।
0: अच्छा हाँ, गर्मी में ऐसे ही खिलाथन कहा। हाँ, पैरा कुटी और कोढ़ा।
1: हाँ,
0: और जैसे बरसात
1: सब रहते।
0: हाँ दाना रफी भी रहते।
1: हाँ, हाँ।
0: तो जैसे चार ठीक गाय है कहा था, तो चारों हाथ दूध दे थे?
1: नहीं, दो ठीक दूध दे थे अभी, और दो ठीक एक डेढ़ महीने के बाद निकल हुई हुई।
0: अच्छा, गाभिन है?
1: गाभिन है।
0: हाँ तो लगभग अभी कतका दूध हो जाते?
1: 27-28 लीटर होते अभी।
0: अच्छा, तो ये दूध ला आप मन कहाँ में बिक्री करते?
1: हाँ, हमारे यहाँ आते एक था बीच में सोसाइटी भी है।
0: सोसाइटी है? हाँ। दूध सोसाइटी।
1: हाँ
0: हाँ, तो एक रेट आप मन ला लगभग कद का मिल जाते हैं?
1: 35-40 रुपए के बीच बना रहते।
0: अच्छा, मतलब यह डिग्री फेट।
1: हाँ,
0: के हिसाब से मिलते
1: का। हाँ,
0: और जैसे ये गाय मन बीच बीच में बीमार भी पड़ जाते हैं, तो एक बार आप मन का कर
1: था? डॉक्टर से सलाह लेके करवाता था ना, बीच बीच में पड़ते हैं बीमार भी।
0: अच्छा, तो जैसे अभी गर्मी के मौसम चलत है, सीजन चलत है, तो गर्मी में विशेष करके गाय मन के ध्यान रखना पड़ते, तो आप मन कैसे मन के ध्यान रखता गर्मी ले बचाए?
1: हाँ, गर्मी बचाए और शेड ने हरा रंग के जो जालिया थे तिल लगाए हम।
0: हाँ हाँ,
1: बार बार धोना पड़ा थे।
0: हाँ,
1: और कुछ विशेष?
0: अच्छा, बार बार धोना पड़ते कहा।
1: हाँ,
0: और तीन चार बार पानी भी पिलाना।
1: हाँ,
0: पड़ते कहा।
1: हाँ,
0: है ना। और आप मन ये जो नीचे में बिछाए है गाय मन के?
1: हाँ,
0: जो
1: मेट।
0: ओह का है?
1: मेट, मेट बोलते
0: मेट।
1: हाँ।
0: ये का काम करते?
1: वो मन ला बैठे बैठे वो सुविधा होते बढ़िया से, पैर वैर में नहीं फिसले भी।
0: अच्छा, पैर वैर नहीं फिसले, मतलब बैठे बर सुविधा होते कहा?
1: हाँ, हाँ,
0: अच्छा से मतलब साफ सुथरा और मन बैठ सकते हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: मतलब पशु मन बह लाभदायक है।
1: हाँ,
0: तो भैया आप मन चार ठो गाय रखे हैं कहा था है ना।
1: हाँ,
0: तो एकर जो गोबर होते एला आप मन का करता?
1: हम खेत में डालता नेला।
0: अच्छा, खेत में डालता।
1: हाँ,
0: तो एकर से का लाभ होते?
1: एकर से हमला खाद वाद कम देव लागते, राखर यूरिया।
0: अच्छा, खाद भी कम देव लागते और उपज भी अच्छा हो जाते।
1: हाँ, अच्छा होते।
0: और आप मन देखे हो कि जो गोबर के खाद जोन खेत में डलाए रहते जोन फसल में, ओकर कुछ अलग ही गुणवत्ता रहते,
1: खाना पीना में हमारा थोड़े से
0: स्वादिष्ट रहते। गोबर के अलावा आप मन ला जैसे गाय से और का लाभ मिलते?
1: गाय से हम लोग दूध से दूध बेचते हैं, कभी कभी बेच जाते पनीर वनीर दही वही।

0: अपन जात है हमर बर।
1: अच्छा हाँ, खाए पिए बर भी बढ़िया हो जाते और संगे संग बेच डाला था तो ऊपर से दो चार रुपए आमदनी भी हो जाते कहा, एकर से घर चल जाते कहा। और ये इतका सारा गोबर होते है ना, तो एकर प्रबंधन आप मन कैसे करता, एला कैसे रखता?
0: हमने गड्ढा बनाया हम कोठा के पास में डाल के करता ना, गैस गोबर गैस बोलते हैं ना, ऊपर भी उपयोग करता ना मन।
1: अच्छा, गोबर गैस के भी उपयोग करता। हाँ, तो गोबर गैस में कैसे करना पड़ते?
0: घोलना पड़ते गोबर गैस के टंकी में घोल।
1: हाँ, टैंक रहते उसमें गोबर ला घोलना पड़ते, तो रोज घोले वाला लगते।
0: हाँ, रोज घोलते हैं, गर्मी में थोड़ा कम घोले वाला लगते भी।
1: तो एकर से गैस अच्छा मिल जाते?
0: अच्छा मिल जाते, घर खाना पकाए पर सब बन जाते।
1: अच्छा, एज में आप मन खाना पका था, एकर से ईंधन के बचत भी हो जाते कहा, और संगे संग दूध भी हो जाते, और संगे संग गोबर हर जो खेत में उपयोग हो जाते, बहुत प्रकार के लाभ होते गाय के पालन करे ले। तो भैया आप मन बतात रहे कि जर्सी और एचएफ रखे हन कहा था, है ना? तो ये मन उत्तम नस्ल के, तो एला राखे के वजह का है?
0: ये मन के वजह है एचएफ मन थोड़े दूध ज्यादा देते हैं और ज्यादा दिन तक देते हैं।
1: अच्छा, लंबा समय तक
0: लंबा समय तक देते हैं।
1: हाँ, तो एक ले अच्छा लाभ मिलते। तो भैया आप मन बहुत ही अच्छा जानकारी दे था, और आखिर में हमारे संगवारी मल्ला आप मन का कहना चाहता था, आप मन के संदेश का रही?
0: गाय पालन में ना अच्छा से फायदा होते, हम पहले नहीं पालत रहे तो हमारे घर चलन पर थोड़ी दिक्कत जात रिश्ते में, बढ़िया फायदा हो के हमारे छोटे मोटे काम में भी हो जाते हैं।
1: अच्छा हाँ, घर परिवार बढ़िया से चल जाते, पैसा के कभू कमी नहीं होते कहा?
0: हाँ, दूध रोज बिकत है तो पैसा हफ्ता गनिया मिल जाते हमला।
1: अच्छा, हफ्ता गनिया मिल जाते।
0: हाँ,
1: ये तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, घर परिवार चले बर यह जरूरी हवे। तो आप मन के संदेश बहुत ही बढ़िया हवे भैया, आप मन इतकी अच्छा जानकारी दे है, एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
0: राम राम, जय जोहार।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: रामू भैया, ये दारी ते धान के फसल भर यूरिया और डीएपी के जुगाड़ कर डारे हस का गा? दाम हर तो आसमान छुआ थे भैया।
2: अरे अरे नहीं भैया, ये दारी मैं हर यूरिया के खर्चा ला आधा करे बर अपन के भुइया में हरा खाद ला बोए। हाँ,
1: हरियर खाद वो कहाँ होते भैया?
2: बस ढेचा सनई ला उगाना है, 40-50 दिन के भीतर में माटी में मिला देना है और फसल ला प्राकृतिक रूप ले पोषण आहार मिलते।
1: वाह, ये तो संजूनी बूटी जैसे काम करी भैया, महू भी अपनाऊ लगा।
2: हरी खाद ला अपनाव, धरती दाई के स्वास्थ्य ला बचाव।
1: ज्यादा जानकारी बर अपन नजदीकी कृषि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर में संपर्क कराऊं।

हाँ तो संगी हो, अभी हमन सुनत रहन संदेश कहा, और संदेश के पहली सुनत रहन सुग्घर अकन के भेंटवार्ता, जोन में हमर भैया बतात रहिन कि उत्तम नस्ल के दुधारू पशु राखिन है और बढ़िया से अमन आमदनी कमात है, अमला सतत आय भी मिलत है, तो एकर से अमन के घर परिवार भी चल जात है। तो ऐसने में आप मन भी पशुपालन के कामला कर सका था और अपन के आमदनी ला बढ़ा सका था। और देखा संगवारी हो, आज के नसीहत के गोट करबो तो आज के नसीहत के विषय हवे बदलते मौसम में बगीचे की उचित देखभाल। बदलते मौसम में जैसे अभी गर्मी के बाद बरसात आही या बरसात के बाद जाड़ आही, तो हमार साग सब्जी और फूल पौधा मन के खास देख रेख करना बहुत जरूरी हो जाते। मौसम बदला थे तो पौधा मन में कीड़ा बीमारी के डर ज़्यादा रही थे, वो मल्ला अलग किस्म के पोषण के जरूरत होते। तो बदलते मौसम में हमन अपन के जोन बगीचा है बारी है ओकर कैसे जतन कर सकत हन, तो एकर बार का करना है माटी के कोड़ाई और सफाई। मौसम बदले के पहली बगीचा के हमला सफाई, सबले पहली बुताए कहा, ओकर बाद निंदाई कोड़ाई करना है। पौधा मन के जड़ के तीर में जतका भी खरपतवार है कचरा घास है ओला उखाड़ के फेंक देवा, कचरा मन पौधा के सारा पोषण ला खुद ही खींच लेते हैं चूस लेते हैं, ओकरे सेती हमला जो भी घास है खरपतवार है ओला उखाड़ देना है। ओकर बाद संगवारी हो, माटी ला भुरभुरी करना है, पौधा के मूर तीर के जो माटी है ओला थोरकिन कोड़ देवा जेकर से हवा और धूप जड़ तक पहुँच सके। और पानी के हमला सही व्यवस्था करना है, मौसम के हिसाब ले पानी दे के नियम ला बदलना चाहिए, जैसे बरसात के मौसम है तो हमला पानी दे के जरूरत नहीं पड़े कहा, ऐसने जो गर्मी ले बरसात आवा थे तो बरसात शुरू होते तो गमला या क्यारी में पानी जमा झन होन देवा, जल निकासी के बढ़िया रास्ता रहना चाहिए, नहीं तो जड़ है का हो जाही सड़ जाही। बरसात से जाड़ आए ले का करना है, पानी दे ला थोरकुन कम कर देवा, माटी ला छू के देखत अगर माटी में नमी है तो पानी झन डाराओ, और जाड़ में ज़्यादा पानी दे ले पौधा में फंगस फफून लग जाते कहा। और ओकर बाद हमार बगीचा के पोषण और खाद के जो खुराक है एकर भी देख रेख करना है, मौसम के बदलाव के समय पौधा मन ला ताकत के जरूरत होते। माटी के कोड़ाई करे के बाद ओमा केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट या फिर बढ़िया सड़े हुए गोबर के खाद ला जरूर मिलावा। अगर आप मन बारी में सब्जी लगाए हो तो माटी के सेहत बने रहे बर थोरकुन में नीम के खली घलो मिला सकत हो कहा, जेकर से माटी में उपजे वाला कीड़ा मन का होते मर जाते। ओकर बाद संगवारी हो, जो कीड़ा और बीमारी है ओकर से हमला बचाव करना है। बदलते मौसम में हवा में नमी बदलते जेकर से कीड़ा मऊहा और फंगस बहुत जल्दी हमला करते, तो एकर बार हमला नीम के तेल के छिड़काव हर 10-15 दिन में करना है, और एला पानी में घोल के पौधा मन में छिड़काव करो, ये एकदम सुरक्षित और जैविक उपाय हवे। और हमला घरेलू नुस्खा भी अपनाना है, अगर पत्ता मन सिकुड़ा थे या फिर उनमें फंगस दिखा थे तो खट्टा मट्ठा या फिर जोन ला मही कथन ओमा थोरकिन हींग मिला के छिड़के ले पत्ता मन एकदम हरियर और साफ हो जाते। और ओकर बाद संगवारी हो, हमार बगीचा के कटाई और छटाई के ध्यान रखना है, पौधा मन ला नवा मौसम बर तैयार करे बर ओकर छटाई भी जरूरी हवे। पौधा में जतका घलो सूखा डार पीला पत्ता या फिर सड़े हुए फल फूल है ओ मल्ला कटर ले हमला काट करके अलग कर देना है, एकर से पौधा के जो फालतू खर्चा बाजते और वो हर नवा मौसम में नवा कली और सुंदर पत्ता निकालते कहा। तो ये तो रही संगवारी हो, बदलते मौसम में बगीचे की उचित देखभाल हमला कैसे करना है। ओकर बाद संगवारी हो, आज के टिप के विषय हवे,
वैज्ञानिक पद्धति से करें पपीता की खेती। संगवारी हो, पपीता के खेती हर किसान भाई बहनी मन बर बहुत कम समय में ज़्यादा मुनाफा दे वाला खेती है। अगर हमन पारंपरिक तरीका के जगह वैज्ञानिक पद्धति ले जो पपीता है वाला लगाबो तो फसल में बीमारी कम आही और उत्पादन घलो 1.5 से 2 गुना मिली। वैज्ञानिक तरीका ले पपीता के खेती करे बर सबले पहली बढ़िया किस्म मन के चुनाव करना है। पपीता में एक ठन किस्म हवे गाइनोडायोसियस पुसा। नर अउ पौधा मादा एक ही पौधा में ये सबले बढ़िया माने जाते, काबर कि एकर हर पौधा में फूल आते, जैसे पुसा डेलेसियस, पुसा मैजेस्ट्री अउ कूर्ग हनी ड्यू। और संगवारी, वो नर्सरी और पौधा तैयार करना है। पपीता के बीज ला सीधा खेत में नहीं बोना है, ओकर पहली ओकर नर्सरी तैयार करना है। एकर नर्सरी तैयार करे के समय हवे जुलाई अगस्त या फिर जनवरी फरवरी के महीना सबले बढ़िया रहते। पॉलीथीन पाउच में ओकर बुवाई हमन कर सकथन। वैज्ञानिक तरीका में माटी, गोबर खाद और केचुआ खाद ला बराबर मिला के पॉलीथीन के थैली में भर देते। हर थैली में 1 या 2 बीज बोते। जब पौधा 15 से 20 सेंटीमीटर बढ़े, लगभग 2 महीना के हो जाए, तब ओला खेत में लगाए बर निकालते। खेत के फिर तैयारी और जो गड्ढा है ओकर खुदाई करना है। तो पपीता ला ऐसन खेत में लगाना चाहिए जहां पानी के निकासी बढ़िया हो, काबर कि पपीता के जड़ में पानी हर जमा हो ले ओकर जो पौधा है वह तुरंत सड़ जाते कहा। तो ये तो हुई संगवारी हो, वैज्ञानिक तरीका ले हमन पपीता के खेती करके कैसे हमन अपन के आमदनी ला बढ़ा सकथन। और भी चर्चा के विषय हवे जीवन के लिए जरूरी है जैव विविधता। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जीवन के लिए जरूरी हवे जैव विविधता। ये बात बिल्कुल सच हवे संगवारी हो। हमार धरती में जितका भी जीव जंतु, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा और मनखे हैं, ये सब आपस में एक दूसरे ले जुड़े हैं। अगर एक भी कड़ी है टूटी तो पूरा जीवन संकट में आ जाही। तो संगवारी हो, हर साल 22 मई के दिन पूरा दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाए थे। तो संगवारी हो, देखा मोर जाए के बेला हो गए कहा। तो जात जात सबो संगी संगवारी मल्ला, सुमित्रा पटेल के राम राम, जय जोहार।

किसान भाई अभी अपना कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में कुमार अनस्थित का संगीत आप सुनेंगे, मनोज मुंतशिर के बोल हैं और आवाज़ है पृथ्वी गंधर्व की।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेंडी कौर और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया प्रवीण धीमन ने। इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आरंभ में हरिहरण के स्वर में यादव फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गीत के बोल आनंद बख्श ने लिखे हैं और इसे संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर। 8:45 होने वाले हैं। आप समाचार संध्या का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
7: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
6: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
7: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
6: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
8: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
9: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
6: सरकार

0: स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
1: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी के सतह से सतह तक मार करने वाले स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा के संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वागदेवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंटली बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है।

शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 9 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। यह आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

यह अवस्थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म का नाम कटी पतंग, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना राहुल देव बर्मन की।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

Red. ये स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम पिया का घर, गीत रचना आनंद बख्शी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए

और अब लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं मुकेश। फिल्म का नाम है संगम। रचना शैलेंद्र की और तर्ज शंकर जयकिशन की।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश रोशन का संगीत, साहिर लुधियानवी के बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ताजमहल के लिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

संगीतकार राम लक्ष्मण का असली नाम है विजय पाटिल। संगीत का शौक बचपन से ही था और वो पहले कॉलेज के ज़माने में नागपुर में और फिर मुंबई में स्टेज प्रोग्राम्स दिया करते थे और उसमें बजाया करते थे। विजय पाटिल अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। फिर उन्होंने मुंबई में अपना एक दल बनाया और अपनी बनाई तर्जों को ही स्टेज पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दर्शक थे दादा कोंड के। वो इनसे इतना प्रभावित हुए कि अपनी फिल्म पांडु हवलदार का संगीत उन्हें सौंप डाला। उन्होंने ही विजय पाटिल का नाम भी बदला। वास्तव में राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति थे, पर उनमें से एक साथी राम की मृत्यु हो गई, लेकिन नाम दोनों का ही चलता रहा, यानी राम लक्ष्मण के नाम से ही संगीत चलता रहा।

संगीतकार राम लक्ष्मण का मानना था कि लोकप्रियता उसी गीत की होती है जिसे हर आम आदमी गुनगुना पाए। अपने संगीत में इस तत्व का उन्होंने हमेशा ही ख्याल रखा। राम लक्ष्मण की पहली सुपरहिट फिल्म रही राजश्री प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत तराना। ये आई थी 1979 में। इस फिल्म के लगभग सभी गाने बहुत ही मशहूर हुए और लोगों ने इस संगीत को बहुत बहुत पसंद किया।

संगीतकार राम लक्ष्मण ने अपने सुरीले रस भरे गीतों से ऐसी ही संगीत वर्षा की। हम आपको बता दें कि गीतकार असद भोपाली के साथ राम लक्ष्मण ने ढेर सारी रचनाएं तैयार की, लेकिन उनमें से अधिकांश तो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी। राजश्री और दादा कोंडके के अलावा प्राणलाल मेहता और दीपक बहरी ने भी अपनी फिल्मों के लिए राम लक्ष्मण के संगीत को अक्सर चुना, इसलिए राम लक्ष्मण को मौकों की कमी कभी भी नहीं रही। अगर बात करें 80s की, तो बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में आईं जिसमें राम लक्ष्मण का म्यूज़िक उस समय बहुत बहुत सुना गया और सुनने वालों ने, दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा। कुछ फिल्मों के नाम याद कर लें, जैसे उस्तादी उस्ताद से, इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे थे, और आंगन में तुलसी एक फिल्म थी, उसके गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए, और राजश्री प्रोडक्शन की सुन सजना और सुन मेरी लैला के गाने भी लोगों ने बहुत पसंद किए। और सबसे ज़्यादा 80 के दशक में राम लक्ष्मण का जो गीत प्रचलित हुआ, सुना गया, सराहा गया और आज भी उसी चाव से सुना जाता है, वो है हमसे बढ़कर कौन फिल्म का। ये फिल्म आई थी 1981 में और ये गाना बहुत बहुत सुना गया और पसंद किया गया।

मराठी फिल्म पांडु हवलदार या माला घी उन ज्याला की अपार लोकप्रियता से प्रेरित होकर 1989 में राम लक्ष्मण ने मीनल राव के साथ स्वयं गाकर मराठी हिस्का नाम से एक मराठी पॉप एल्बम भी निकाला था। वैसे राम लक्ष्मण अपनी निजी जिंदगी में बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। हिंदी फिल्मों में असफल दौर भी उन्होंने देखा, पर राजश्री ने उनका साथ नहीं छोड़ा और 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया, इसने तो लोकप्रियता के कीर्तिमान स्थापित किए और संगीत तो लाजवाब था। राग पहाड़ी और शिवरंजनी की लोकधुनों का इस फिल्म में राम लक्ष्मण ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आधुनिक रिद्म के साथ पहाड़ी के लोक सुरों से सम्मिश्रण से सृजित दिल दीवाना बिन सजना के मानीना गाना बहुत बहुत पसंद किया गया और मैंने प्यार किया की अभूतपूर्व सफलता ने राम लक्ष्मण को वर्षों बाद फिर से एक बार लोकप्रियता का स्वाद चखाया।

राम लक्ष्मण के संगीत में एक अपनापन, एक घरेलूपन सा होता था जिसे सुनने वाले बहुत बहुत पसंद करते थे। हम आपके हैं कौन उनकी ऐसी ही फिल्म थी जिसका एक एक गीत बहुत ही मशहूर हुआ। वैसे उनकी फिल्म सातवां आसमान भी एक उल्लेखनीय फिल्म है जिसके गाने बहुत सुने गए।

संगीतकार राम लक्ष्मण के संगीत से सजी बहुत सारी फिल्में हैं। इस कम समय में उनकी सारी फिल्मों के गानों की हम एक एक लाइन भी नहीं सुनवा सकते हैं, पर फिर भी हमने कुछ कोशिश की।

0: कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें।

0: वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: राजऋषि गिरधर महाराज का लिखा ये गीत प्रवीण हीरा के संगीत पर अभी आप सुन रहे थे आवाज थी कृष्ण शर्मा की। आकाशवाणी रायगढ़ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध संगीत। अगला गीत पायल देव के संगीत पर कुणाल वर्मा का लिखा हुआ है, आवाजें जुबिन नौटियाल और पायल देव की हैं। ये गीत हम आपको सुनवाएंगे इन संदेशों के बाद।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

नस्मे में भी रोया गया ये खूबसूरत एहसास। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद इरफान के स्वर में, संगीत गुप्ता का लिखा हुआ था और अनुराग सेकिया ने इसका संगीत तैयार किया था। कार्यक्रम के अंत में उस्ताद सुजात हुसैन खान के स्वर में ये गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं। कमलेश सोनावाला का लिखा हुआ है और संगीत उस्ताद सुजात हुसैन खान ने ही तैयार किया है।

कमलेश सोनावाला की लिखी गज़ल अभी आप सुन रहे थे उस्ताद सुजात हुसैन खान के आवाज़ और तर्ज में। इस गज़ल के साथ ही अब कार्यक्रम विविध संगीत समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम के आरंभ में आशा भोसले के स्वर में गुलजार का लिखा यह गीत सुनिए। गीतकार गुलजार के इस गीत को संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मा ने। फिल्म है सितारा।

0: बड़ी नीची राहें हैं ऊंचाइयों की, ये दुनिया है। क्या कहा जाए गुलजार साहब के बारे में। बहरहाल अगला गीत इन संदेशों के बाद।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

ऐसे तराने सुन के दोस्तों जरूर लगता है कि चाहे दुनिया कितनी भी जालिम हो जाए, कयामत के कितने भी बर्पा आ जाए, लेकिन प्यार आखिरी कयामत तक रहेगा। ये गीत लिखा आनंद बख्शी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर इसे हमने आपको सुनवाया मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, तकदीर फिल्म से। अगला गीत सितमगर फिल्म का है, आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया है। मजरूह के बोल हैं, राहुल देवबर्मन का संगीत है। ये गीत इन संदेशों के बाद आप सुन सकेंगे।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: आकाशवाणी एफ 90।
1: आकाशवाणी के शानदार 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी प्रसारकों को और श्रोता साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिदार एक छोटी सी कविता के साथ अपना विचार साझा कर रहा हूँ। रेडियो के साथ उड़ता हूँ, रेडियो के साथ उड़ता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ, इसी के साथ सोता हूँ। जब सुनाता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता है, तो बहुत खुश होता है। कभी फरमाइश पूरी ना हो, कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपक होता हूँ, तो मायूसी में आपक होता हूँ। मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से, मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूँ। धन्यवाद और पुनः सभी को बधाई।

0: बाजार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और तलत अजीज़ की आवाज़ थी, मखदूम मोहिउद्दीन इस गीत के लिखक थे और खयाम का संगीत आपने सुना। कार्यक्रम रजनीगंधा के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कश्मीर की कली फिल्म का मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत, जिसे लिखा एस एच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया ओपी नैयर ने।
1: दुनियाओं से की जमाना

कश्मीर की कली फिल्म के मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही अब फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 107.7 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप समाचारों का अनुप्रसारण सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action.

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण